अब अप्रूव्ड किया हुआ प्रोडक्ट है जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छे से जान जाएंगे कि वाकई सदरा जो बता रही है बिल्कुल सही बता रही है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं और आप लोगों से भी पूछने वाले हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आपने सोचा है कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है या फिर कहाँ कहाँ पर अभी तक अवेलेबल कराना बाकी है। रेडी हो जाइए हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आपका हमारे साथ होगा जी प्रोग्राम में पूरी पूरे 3 बजे तक। 2 घंटे हमारे पास मौजूद है, 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ करेंगे लाता दासी बातें और ना सिर्फ प्रोग्राम में टेस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बातें होती है बल्कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे गाने भी लगाते हैं, आप लोगों के साथ बातें भी करते हैं, आप लोगों से कुछ पूछते हैं, कुछ आपको बताते हैं और ऐसे ये सिलसिला जारी और सारी रहता है जनाब पूरी पूरे 3 बजे तक। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिया कर हमारा इंतजार कर रहे थे, ऐसे बहुत सारी अंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम पे कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सदर आली बॉस आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल जी आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल आगे से प्रोग्राम करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कसीदे के साथ। प्रोग्राम की स्टार्टिंग में एक प्यारा सा कसीदा एंजॉय करते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम क्या करने वाले। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।

0: अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत. और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. तो यहाँ पर प्रोग्राम में आप लोगों के साथ बातें हो रही है जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में. अगर आप नहीं जानते हैं तो अगर आप हमारा प्रोग्राम सुनेंगे तो आप अच्छे से जान जाएंगे. तो हाँ जी, अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, तो क्या तरीके कार फॉलो करेंगे उसकी जानिब जरा आ जाते हैं. लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल क्या पूछ रही हो. तो अगर आज के प्रोग्राम का जो सवाल है वो आप लोगों से पूछा जाए तो क्या होने वाला है. तो आज मैं आप लोगों से पूछूंगी, आप मुझे बताएं. वैसे तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सारे झूठ बोल रहे होते हैं, ऐसा होता है ना. आप लोगों ने भी बहुत सारे झूठ बोले होंगे. वैसे ये तो एक कॉमन सा झूठ हो चुका है आजकल. अगर आप फोन पर किसी से बात करते हैं तो आगे वाला इंसान अगर आपसे पूछता है कि भाई आप कहाँ पहुंचे हैं या फिर कब आ रहे हैं, तो आगे से आपने बोलना है 5 मिनट, हालांकि आप घर बैठे होते हैं. ये तो एक ऐसा झूठ है जो मुझे लगता है कि हर कोई रोजाना क्या मतलब बार बार बोलता ही होगा. तो आज मेरा आप लोगों से सवाल होगा वो बिल्कुल होगा कि आप मुझे बताएं कि अगर झूठ बोलने पर 100 रुपए फाइन लगती तो आज आप एक दिन के अंदर जो है ना वो कितनी फाइन भरते. आपको क्या लगता है, इसे अंदाजा लगा लीजिए कि अगर एक झूठ बोलने पर 100 रुपए फाइन लगती तो आप रोजाना कितने पैसे भरते. ओके जी, उसके अलावा यहाँ पर अगर आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, तो ऐसे कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर. अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब. और जैसे आप सर्च करते तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है. और जी, जब आप हमारे पेज पर आएंगे तो वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जैसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे. तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए. ऐसे सबको बताइए कि भाई मार्केट में आ चुके हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. और मार्केट में जब आप जाते हैं तो आपको आराम से डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल जाती है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने के कितने सारे फायदे हैं ये तो मैं आपको बताऊंगी ना. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई आपकी स्किन जो है ना, ये ऐसा नहीं होता कि भाई कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारी स्किन तो काफी सेंसिटिव है, हम तो कोई प्रोडक्ट लगा ही नहीं पाते, तो हमारे तो काम की ये बात होगी नहीं. तो आप लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में इन है जनाब, जो कि आप लोगों के लिए मेडिकेटेड फार्मूला है. जब आप जो लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे होंगे तो उनको इस चीज का अंदाजा हो चुका होगा, ये जो प्रोमो चल रहा है, ये जो वीडियो चल रही है, तो इसमें जो दिखाया जा रहा है उससे बिल्कुल ये साबित हो रहा है कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको किस तरह से अच्छा वाला रिजल्ट मिलेगा. और ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहेगी, क्योंकि ये जो स्किन के डॉक्टर्स होते हैं ना, उन्होंने मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का फार्मूला तैयार किया है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगाने के बहुत ज्यादा वाले जो है ना वो फायदे आपको मिलने वाले. और साथ ही साथ अगर आप भी इस्तेमाल करें तो हमारे साथ शेयर कीजिए कितने सारे लोग हैं जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं. और उसके अलावा अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ये नंबर होना चाहिए जिसके ऊपर आप रابطہ कर सके और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सके. तो जल्दी जल्दी से आपने डायल करना है 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाह 25 970 आई बियो नंबर आहे 033-27-38-4309 बुड़ी 332 73-84-309 ओके जी. सो जल्दी से नंबर्स के ऊपर रابطہ कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराइए और वहां से जाकर आसानी से परचेज करके आइए. ओके जी, तो यहाँ पर प्रोग्राम में आज बात हो रही है, टॉपिक जो आप लोगों से पूछा है, टॉपिक ये पूछा है कि आप मुझे बताइए. हाँ जी, आपने आज थोड़ा सा हिसाब कर लेना है कि आप बैठिए और आप सोचिए कि आप दिन में कितनी मर्तबा झूठ बोलते हैं. तो अगर एक झूठ बोलने पर आपको 100 रुपए की फाइन लगती, ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि एक दिन में तकरीबन आपका कितना हिसाब होता है कि भाई मुझे कितने पैसे भरने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अंदाजा होगा ना कि आप कितने झूठ बोलते. तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और हमें ज्वाइन कीजिए 888-1 और फेसबुक पर. बिल्कुल जी, आपके मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं. तो जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर हैं वो ऐसा किया करें, पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें. भाई लाइक आप लोगों का जो होता ना वो मेरे लिए बहुत मायने रख रहा होता है, पोस्ट को लाइक जरूर कर दिया करें. उसके बाद एक आधे दोस्त को हमारी पोस्ट को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो भाई उन्हें भी पता चलेगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मार्केट में आ चुकी है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने के कितने सारे फायदे हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने वाले बताइए जरा, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर चुके हैं तो आपको रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं? ओके जी, यहाँ पर अखलाक बलूच हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में मौजूद है जी, आपको वेलकम कहा जाता है। और फरवा गुल कहती है, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे। आप कैसी हैं? होप यू आर फाइन। यस गुड, आप बताएं कैसी हैं? मोहम्मद मीरन जखरानी में सुन रहे हैं, जेकब आबाद से भाईजान को वेलकम कहते हैं। और रशीद खोसो में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। इब्राहिम शाह बुखारी दरगाह से आपका शो सुन रहा हूं, बहुत शुक्रिया जी, आपको वेलकम कहते हैं। और रशीद खोसो कहते हैं, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह जबरदस्त है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ कहते हैं, गुड आफ्टरनून मैम आरजे, थैंक यू वेरी मच सर। और फरवा गुल कहती हैं, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना, आप मेरा गाना नहीं चला रही हैं? गाना ना चलाने की वजह ये नहीं होती कि मैं आपसे नाराज हूँ, बस वो ऐसे ही नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारे लोगों की फरमाइशें होती हैं। अच्छा, फहीम शेख हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, मौलाना सलाम अदर अदा चाहला खुश सफा चाक स्लेट कलम भाओ जो सफा लाजवाब आहे अम्हा वांगे। अम्मा मांगी यानी थोड़ी तारीफ करी वरी हेठा तवा गाने जी फरमाइश करी छी आई। सही बाबा, सही अब्दुल्ला अली हमारे साथ है। ओके जी, अब्दुल्ला अली कहते हैं, हाँ जी लिखते हैं कि लोग बिछड़कर भी बिछड़ते नहीं, वो याद बनकर दिल में हमेशा रहते हैं। अब्दुल्ला शेर क्या बात है जी, आपको वेलकम कहते हैं। और ये हमारे साथ हैं जी अखलाक भाई कहते हैं, छड़ा ताना अंदर साढ़े छदिन था घर वारा ये नहीं प्रोग्राम में अच्छी वेंदा आयो। और गुलाम हुसैन अबरू लिसनर हमारे साथ मौजूद है, आपको भी वेलकम हो गया। और कासिर खान हमारे साथ है, हाय हेलो। और शुएब मंगी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम असलाम, सिद्रा मुस्कान बिल्कुल ठीक ठाक है। शो सजाद अली साजिद का गाना सुनाए, चलिए ठीक है जी, आपकी फरमाइश भी लगा दी जाएगी। और अच्छा, फरमाइशें जो लोग कर रहे हैं ना वो मुझे ये भी बताएं कि आप पोस्ट को लाइक और शेयर कर रहे हैं नहीं, और साथ साथ आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कब करने वाले हैं, क्योंकि एवं ही आकर फरमाइशें कर देते हैं, कुछ तो बदले में होना चाहिए ना। ओके जी, स्मार्ट किशोर भाई हमारे साथ कहते, एतबार की हद पूछते हो तो सुनो, दुनिया का कोई भी शख्स मुझे तुम्हारे खिलाफ नहीं कर सकता। असलाम अदा स्मार्ट, हाजिर आए बुद्धि करे करना खुश थी। थैंक यू। और कासिर खान कहते, चापे करोड़ों का फाइन भरते, इतना ज्यादा झूठ बोलते। अच्छा, अखलाक भाई कहते, आंसर लगभग 100 रुपया, बस एक झूठ बोलता हूँ, चलो ये वो भी सही है। और फरवा कहती, टॉपिक आप ही, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, झूठ बोलना बुरी बात होती है, चलें ये भी सही है। और रशीद खोसो कहते हैं, अभी हम दिन में 10 मरतबा झूठ बोलते हैं तो 1000 लग चुका होगा। अच्छा, और हिदायतुल्ला कहते हैं, सलाम कैसी हो सके तो मेरा एक काम करो, ये सॉन्ग प्ले करो, मेरे नाम करो। ओके, आप ऐसा करें कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करें, और हो सके तो ये आप आज ही कीजिएगा। और किशोर भाई कहते हैं कि टॉपिक मुंजो तकरीबन 2-3 हज़ार थी वेंदो। अल्लाह, इनो कूड़ गालेंदा है। अच्छा, अब्दुल्ला कहती हैं, आप मेरे पापा का नाम क्यों अनाउंस नहीं करती प्रोग्राम में, वो क्या है थोड़ा मुझे पता नहीं क्यों मुश्किल सा लगता है। अच्छा, मैं देखती हूँ क्या है आपके पापा का नाम। अकरी चौधकी खां अली गुलाब शर अब्दुल्ला शर असगट मौजूद हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपकी पापा का नाम है अली गुलाब शर, ओके, थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, आप दोनों को वेलकम कहते हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी करीबी जनरल स्टोर्स पर मिल रही है नहीं, मुझे जल्दी से बताइएगा। और उसके अलावा अगर नहीं अवेलेबल तो आप जरा ऐसा कीजिए, थोड़ी सी हेल्प कर लिया करें मेरी, और अपनी ना करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा लिया करें। उसके बाद आप ऐसा कीजिए, हमारे साथ मौजूद रहिए, टॉपिक को फॉलो करते जाइए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यहाँ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम।
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए, आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर दी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी غذائی اجزاء मिले इसके हर दाने में तीनों اجزاء की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
5: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: और उसी का इंतजार कर रही हूँ.
1: थैंक गॉड शी इज हियर. और प्यारी प्यारी फीडबैक्स मुझे मिलती जा रहे हैं जिन्हें हम शामिल प्रोग्राम जरूर रखेंगे. ओके, सो लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बताएं जी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए अवेलेबल है जी मार्केट में, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन का फेस वॉश भी अवेलेबल है. ये दो प्रोडक्ट मार्केट में है जो कि आप जाकर परचेज कर सकते हैं. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोग अच्छे से जानते हैं कि एक ऐसा फार्मूला है जिसे स्किन के डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है. आप लोगों को इस चीज का थोड़ा सा अंदाजा हो चुका होगा कि जब आप मार्केट जाते हैं तो बहुत सारे केमिकल से भरे हुए प्रोडक्ट्स अगर आप वहां देखते हैं तो आपको लगता है कि भाई ये हमारे काम की चीजें है ही नहीं. और उन्हीं चीजों को देखते हुए आपको लगता है कि भाई सारी ही नाइट क्रीमें ऐसी होती हैं, सारी ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं. तो ऐसा कोई सीन नहीं होता. उस इतने सारे प्रोडक्ट के अंदर उसमें से जो है ना वो सही वाला प्रोडक्ट परचेज करना, सही वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट करना, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है. सही वाला प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम सही वाला प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बिल्कुल ही मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार किया गया है. डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फा आर्बुटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, तमाम चीजें ऐड की गई हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक सिर्फ नाइट क्रीम है बल्कि ये 2-in-1 फार्मूला है. वो कैसे? क्योंकि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं ना तो इसके अंदर जो ये विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स हैं, ये वो फार्मूला है, वो चीजें हैं जो कि भाई आप लोगों के लिए, खास करके खवातीन जो महंगे महंगे फेशियल्स कराती हैं ना, और आप लोग ऐसा सोच देंगे भाई महंगे महंगे फेशियल्स कराएंगे तभी हमें ऐसा रिजल्ट मिलेगा. तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स हैं. ये बिल्कुल वही फार्मूला है जो आपको महंगे से फेशियल कराने के बाद आपको निखार मिलता है. अब ऐसा वाला सीन बन चुका है कि आपके पास टाइम बहुत थोड़ा है, आप इतने पैसे भी नहीं लगा सकते, तो आप बस डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए क्योंकि ये 2-in-1 क्रीम है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आपके पैसे भी बचाती है, आपका वक्त भी बचाती है, और आपको खूबसूरती भी वो वाली देती है जो आपकी खूबसूरती की हिफाजत करती रहे. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल सेफ फार्मूला है. आप इसे हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, हर स्किन के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है. और साथ साथ अगर आप डी स्किन का फेस वॉश भी यूज करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, लाजमी कीजिएगा. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगाने के क्या तरीकेकार वो भी सर आप लोगों को बताते हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जनाब ये नाइट क्रीम है ना, तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा. वैसे भी सही फार्मूला यही है कि अगर आप रात के टाइम इस्तेमाल करें तो सही होगा. सबसे पहले अपना फेस वॉश कीजिए, अच्छे से चेहरे को क्लीन कीजिएगा. साफ करने के बाद अपने चेहरे को सुखा लीजिए. उसके बाद डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए. उंगलियों की मदद से आराम आराम से प्यार प्यार से लगाइए, और इस तरह लगाएं कि क्रीम आपके चेहरे पर किसी नजर आनी चाहिए. क्रीम को पूरा ही स्किन के अंदर जज्ब नहीं कराना होता. इससे भी थोड़ा सा मसला हो जाता है कि जब आपके हाथों की हीट आपके फेस पर आती है ना, जब आप रगड़ते हैं, मसलते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो ऐसे भी थोड़ा प्रॉब्लम बन सकता है. तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको अच्छे से रिजल्ट मिले, अच्छा सा आपको निखार मिले, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आराम से हल्के हल्के हाथों से इस्तेमाल कीजिएगा. और खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन में आपने शामिल करना है डी स्किन ब्यूटी क्रीम, क्योंकि इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन केयर रूटीन को मजीद खास बना देगा. और जनाब अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन साफ सुथरी हो, अच्छी तरह मॉइस्चराइज हो, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए क्योंकि आपकी जल्द जो है ना ये डिजर्व करती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम. तो और मजीद जो प्रोडक्ट आप अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका हेवी सा फार्मूला है, तो उनको जरा बाय बाय कीजिए. डी स्किन ब्यूटी क्रीम को हाय हाय कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए. ठीक है, चाहे आप मर्द हजरात हैं, चाहे आप खवातीन हैं. ये भी चीज जरा थोड़ी ऐसा होता है कि भाई आप सोचते हैं कि हम मर्द हजरात हैं तो क्या हम लगा सकते हैं, हमारे लिए है, बताएं तो जरा. तो बिल्कुल जी, आप मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑल स्किन टाइप के लिए है तो इसमें आप मर्द हजरात भी शामिल हो जाते हैं. तो मर्द हजरात भी लगाएंगे, खवातीन भी लगाएंगी, सब लगाइए, खूबसूरत हो जाइए और बोलिए ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके करीबी चैनल स्टोर्स पर नहीं अवेलेबल तो जल्दी से अवेलेबल कराइए और डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 50-25 970. ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-38-43-09. टे सौ ॿटीह ॿुड़ी 332 27 38 43 ऐं 09. ये सोचेंगे बीच बीच में क्या हो जाता है भाई सिद्रा को, बीच बीच में सिद्रा थोड़ा सिंधी जो है ना वो कमजोर है हमारी, कुछ लोग कमजोर होते हैं, कुछ का दिमाग कमजोर होता है, हमारी थोड़ी सिंधी कमजोर है। चले कोई बात नहीं, आपको सुनाते मजे मजे के गाने, आप लोगों के साथ करते हैं बातें, और मुझे बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम कहाँ तक पहुंची, आपकी करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो चुके नहीं, आप ऐसा कीजिए पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कर दिया करें, कंजूसियां यहाँ पर नहीं बनती।

आप सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करें जनाब, आपकी खूबसूरती में इजाफा, क्या मतलब बहुत ज्यादा वाला इजाफा आ जाएगा. और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपके मैसेजेस की जाने बातें हैं, तो यहाँ पर सगीर अहमद हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं आप ही, आप कैसी हैं? आप ही बिल्कुल ठीक ठाक है, कहते हैं आपका प्रोग्राम अमेजिंग है. आपका प्रोग्राम बचपन से सुनता आ रहा हूँ. सगीर अली खरल फ्रॉम लाड़काना, बचपन बोलकर मेरे को ऐसा फील कराते मैं बड़ी बुढ़ी हो चुकी हूँ, वो मेरा भी बचपन था. जी जी, हम सब का बचपन था. अच्छा फरमा गुल कहती आप ही, आपका शो शेयर और लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच प्यारी. अरशद मरी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम अरशद, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? कहते नाइस शो फ्रॉम खैरापुर सिटी, ओके क्या बात है. और किशोर भाई कहते हैं कि मैं वो झूठ बोलता हूँ जिससे लोगों को खुशी मिले, जैसे हम रिश्तेदारों की तारीफ करते हैं, अपनों का दिल रखते हैं, ऐसे समझी ना चरी. जी जी माँ, समझी गए.

बिल्कुल सही है कि हम डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारे झूठ बोल रहे होते हैं, इतने झूठ कि हमें अंदाजा भी नहीं लगता कि भाई हम कितने सारे झूठ बोल चुके होते हैं। जी जी, कोशिश किया करें थोड़ा सा सच बोले, थोड़ा सा, आधा किलो। ओके, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। और गुलाम अकबर खास के लिए कहते हैं, शायद आखिरी हो जे ही सितम उन्हें जो इहो सोचे हर सितम सहंदा रहा सी आईली। और उनका अलावा आरजे सारंग अकबर हमारे साथ ही कहते हैं, एब्सोल्युटली ग्रेट फ्रॉम स्टूडियो ऑफ एफएम 90 नूरियाबाद, कनेक्टेड योर शो। ओके, आपने हमारा प्रोग्राम कनेक्ट किया है, क्या बात है जी, आपको वेलकम कहते हैं। सही से प्रोग्राम कनेक्ट किया करें। नूरियाबाद के लोगों को सही से प्रोग्राम सुनाया करें, ठीक है, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। हाँ।

खास के लिए कहते हैं अंदाजो ही कोने बाबा कूड़न जो टॉपिक ते गालायो था सही सही अली रजा कहते हैं अली रजा आप हमें दुबई से सुन रहे हैं मुख्तियार अली शिदी का गाना

सही है, कुछ नहीं थी, स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई. ऐसा ही कि फिर मुझे सुनने को मिलता है कि आप प्रोग्राम में सिर्फ मैं कर दी. मैं बकरी नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ. और अनवर भाई कहते हैं कि मोहल्ले की मोहब्बत का भी एक अलग ही फसाना था. हाँ जी, सही बात है, सही बात है. बचपन बड़ा शहाना था, खिलौने तोड़ देता था नया लेने की जिद में. मुझे भी याद है मैं किस कदर नादान होता था. मासूमियत और तड़प लौटा दे कोई मुझे वो बचपन के दिन. ना कोई फिक्र थी, ना कोई गम था, अब तो बस हसरतें ही हसरतें हैं दिल में. काश वो हो, फिक्री का जमाना फिर आ जाए. हाँ भाई, ये काश ही रह जाती हमारी जिंदगी के अंदर. कोई नहीं, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई, ऐसा नहीं कि फिर आपकी जिंदगी में काश, काश असान डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुआ. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर जो सैया. अच्छा, सगीर कहते हैं झूठ बोलना अच्छी बात नहीं, मगर फिर भी कभी कभी 100 का फाइन लग सकता है, मगर फ्यूचर में ये कोशिश करेंगे कि ये 100 का फाइन भी कभी ना लगे. वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, यू बुद्धि डाडो भलो लगो वाला. और सारंग अकबर कहते हैं कि डन, नूरियाबाद वाले शो को कैसे ज्वाइन करे, काइंडली हाईलाइट करे. जी, नूरियाबाद वाले आसान तरीके से हमें ज्वाइन कर सकते. एक तो ये हमारा लाड़काना का पेज है, जीए लाड़काना FM 88.8. अगर आप नूरियाबाद वाले सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा ये जो फेसबुक वाला पेज है ना, ये मिल जाएगा. और वहाँ पर आप आकर हमारी पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे. अदरवाइज अगर आप हमें सिंपली मैसेज करना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन आइए, सबसे पहले आपने लिखना है LRK. ओके जी, LRK लिखिए, उसके बाद सिंगल स्पेस दीजिए, अपना पूरा मैसेज लिखिए विथ नाम, और उसके बाद अपना मैसेज जो है वो सेंड कीजिए 8881 पर. बिल्कुल जी, ये सिंपल से तरीकेकार हमारे सिंपल से प्रोग्राम में शामिल होने के. तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और मुझे बताइए नूरियाबाद में कितने सारे लोग हैं जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप तैयार हो चुकेंगे. हाँ जी भाई जान, हम भी लगाएंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएंगे ताकि हम भी खूबसूरत हो जाएं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है और पहली मरतबा ऐसा वाला सीन बन चुका है कि आपके लिए मार्केट में. और इनफैक्ट देखा जाए तो पाकिस्तान में ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स का मैं जिक्र करती हूँ ना, ये पाकिस्तान में 2 से 3 प्रोडक्ट हैं जो कि बनाए गए हैं इस तरह, जिनका फार्मूला इतना मजेदार रखा गया है कि ये 2-in-1 है. यानी कि अगर आप ये नाइट क्रीम लगाते हैं तो बस इनफ हो जाता है, आपको इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फेशियल वाला जो निखार है ना वो मिल जाता है, आपको अलग से कोई फेशियल करने की नीड भी नहीं होगी. तो बस आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का प्रोडक्ट है, प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है. आप परचेज करेंगे तो आपको अंदाजा हो ही जाएगा. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप खवातीन हैं चाहे आप मर्द हजरात हैं.

डोले के पानी मर्जी ते न छड़ी ना कयो डोलो मते ते चढ़ी वेंदो किशोर भाई कहते हैं कि मायूं चवंदी आए ना तो केड़ी हाय लगी आए तो केड़ी हाय लगी आए ना उहा हाय उन हाय जी गाल नया कंदे वैसे तो अमी चवनिया कि जी हाय ना वटजे बिल्कुल वैसे उहा हाय ना ये भी हाय जका हेलो हाय वारी हुंदी आ किते अगर असा पाजी जुबान में मुंची वनियो तो समझो असा आलसी आयो बिल्कुल मां भी यो ही चवंदी आ और म्यूजिक जी तारीफ कया तवा वाह वाह वाह एड़ी गाल कंदा ना तो मां इलाही सारा तांगे अंग्रेजी गाना बुधाई नी मां

0: अगरि हिकिड़ो फाइन एक्स्ट्रा लॻाईंदव त कहिड़ो तव्हांखे डोर मिलंदो? 100 रुपियो हिकिड़ो एक्स्ट्रा भरियो, ठीकु आहे? समझी वया हूंदा। चलो पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। कंजूसी कंदा आयो ते तां असानी पोस्ट के लाइक न कंदा आयो, अल्लाह सही डोर ॾींदव। अला
1: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har dia jo show. A product by Biocon International Pakistan.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
4: Sindh ja wakil ek awaz mutahid sindh jo awaz paigham sindh bar de sindh unity day ware sad te wakilen para adalati karwan jo boycott ahm muzahira. कराची खां कश्मोर ऐं कारुंजर खां केटी मंदर ताईं को बि वकील कंहिं बि अदालत में पेश न थियो। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं लाड़काने डिवीज़न जे समूरनि नंढनि वॾनि अदालतनि में को बि केस न हलियो। नंढनि वॾनि शहरनि में वकीलनि जा मुज़ाहिरा, सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं बंदि करण जो मुतालबो। पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब जो दिफ़ाई सहकार जारी आहे। दिफ़ाई मुआदे ते अमल दरामद लाइ वक़्तु घुरबल आहे। परॾेही तर्जुमान सजाद हैदर ख़ान चयो आहे त पाकिस्तान सऊदी अरब जी ख़ुदमुख़्तियारी ऐं सलामतीअ लाइ हिमायत जारी रखंदो। पाक फोर्स सऊदी अरब में तरबियती ऐं लॉजिस्टिक सहूलियत लाइ मौजूदु आहे। पाकिस्तान सऊदीअ ते हूसी हमलनि जी मज़म्मत करे चुको आहे। अफ़गान शागिर्दनि ते बि पाबंदीअ वारियूं ख़बरूं दुरुस्त न आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऑटो पॉलिसी 2026 जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। ऐलान IMF जी मंज़ूरी बाद कयो वेंदो। ऑटो पार्ट्स जे बरामदाद वधाइण लाइ आर्मी वैल्यू चेन सां ॻंढण ऐं 5 वॾा एंकर इदारा ठाहिण जी तजवीज़। बरामदी ऑटो पार्ट्स ते दरांदी वेंदी। ड्यूटी ख़तम करण जी बि सिफ़ारिश कयल। उर्दन में अमरीकी अॾे ते ईरानी हमलनि जे नतीजे में अमेरिका जे केतिरनि ई फ़ौजी जहाज़नि खे नुक़सान पहुतो आहे। अमेरिकी मीडिया तसदीक करे छॾी। CBC न्यूज़ पंहिंजी रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त ईरानी मिज़ाइल हमलनि में अमेरिका जा F-15 जहाज़, A-10 थर्ड बोल्ट मुतासिर थिया आहिनि, जॾहिं त कंहिं ॿिए अमेरिकी फ़ौजीअ खे नुक़सान न आहे पहुतो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो तुर्किय जे परॾेही वज़ीर सां राब्तो, ॿिनि तरफ़नि लाॻापन समेत ख़िते जी सूरतयाल ते ॻाल्हि ॿोल कई वई आहे। परॾेही खाते वज़ीर मूजिबि इसहाक़ डार ऐं हाकान में विचोभर जी तब्दील थींदड़ सूरतयाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई आहे। सूरतयाल ते सिफ़ारतकारी वारो सिलसिलो जारी रखण ते इतफ़ाक़। वज़ीर आला हाउस में भुट्टो स्टेम स्कॉलरशिप बाबति प्रोग्राम। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह, तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह ऐं ॿियनि जी शिरकत। तकरीब खे ख़िताब कंदे सैद मुराद अली शाह चयो त सिंध जे चूंडियल होशियार शागिर्दनि खे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ण जो मौक़ो मिलियो आहे, जंहिं लाइ रक़म सिंध हुकूमत ॾेई रही आहे। तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह चयो आहे त ऑक्सफोर्ड वेंदड़ 5 शागिर्दनि जे कुलनि ते डिग्रियुनि सां गॾु सिंध जूं बि उमेदूं वाॻियल आहिनि। उमेद आहे त शागिर्द सिंध जो ॻाट ऊचो कंदा। सिंध जो घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार तलबीअ ते मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन आरो पेश। ज़ियाल अंजार एडवोकेट जनरल जे रवैये ते ग़ैर मशरूत माफ़ी वरिती। जस्टिस उमर सयाल चयो आहे त अवां खे घुराइण जो मक़सदु वारसनि ऐं अवाम जो इतमाद बहाल करणु आहे। एडवोकेट जनरल जो रवैयो ग़ैर ज़िमेवाराणो ऐं तसई कामेज़ हो। घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार चयो आहे त सिंध हुकूमत केस जी शफ़ाफ़ जांच चाहे थी। कमीशन जे नतीजनि ताईं पहुचणु ज़रूरी आहे। ज़िमेवारनि खे मुंतक़ी अंजाम ते पहुचायो वेंदो। मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन पारां डॉक्टर उसामा जे जवाब ते बेअतमादी ज़ाहिर। 15 सितंबर ते ज़ाती हैसियत में तलब कमीशन SHO अदील अफ़ज़ाल, हेड मरर ज़िशान, डॉक्टर सीमा ऐं प्रोफेसर नसीम खे 14 सितंबर ते तलब करे वरितो। कमीशन जे रजिस्ट्रार चयो आहे त शहरीनि बि केस बाबति ॼाण ॾियणु शुरू करे छॾी आहे। हिकु शहरी पारां बाउंस अकाउंट बि ॼाण फराहम करण ते राज़पोका ज़ाहिर कयो आहे। ॿिए शहरी डिजिटल फुट प्रिंट्स बाबति ॼाण ॾिनी आहे। हिकु शहरी केस में मशकूक शख़्स जी बि निशानदेही कई आहे। कमीशन ॼाण ॾींदड़ शहरीनि जी सुञाणप ॻुझी रखण जो फ़ैसिलो कयो आहे। कराची जे एहतसाब अदालत के लिफ्टन में प्लाट जी गैर कानूनी अलाटमेंट वाले केस में वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ए बेन के नोटिस जारी कर छो। मुस्तफ़ा कमाल ए बया 15 सितंबर से तलब एहतसाब अदालत वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल एस बी सी ए के अगोड़े डी जी इफ्तार कायम खानी अगोड़े डी सी ओ फजुल रहमान के डी ए के अगोड़े डी ओ मुमताज़ हैदर के डी ए के एडिशनल डी ओ सैयद निशात अली रिजवी मोहम्मद रफीक ए बेन के तलब कयो। नवा सूबा तमाशो ए रोन शो आहे। ही सूबा ठाहिण न पर सूबा खत्म करण जी साज़िश आहे। कुझु माण्हू कराचीअ खे सिंध खां धार करणु चाहिनि था। एस टी पी सरबराह डॉक्टर क़ादिर मुंशी चयो आहे त कराची जी मिल्कियत ऐं आलमी अहमियत ते कब्ज़े वारी साज़िश कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदासीं। वन यूनिट ठाहे सूबा ख़तम कया विया हुआ। हिन वक़्त बि नंढा नंढा यूनिट ठाहिण कब्ज़ो करण जी साज़िश आहे। सॼी सिंध हिकु आवाज़ आहे, क़ौमी बका लाइ पुरअमन ऐं तारीख़ी जिदोजहद कई वेंदी। रोड़ी जी मच्छर कॉलोनी में घर जी मरम्मत दौरान छित किरण सबब मजदूर दबजी फोत थी वया। फोत थियल मजदूरन में अजीब राह लवासी शामिल आहिन। पुलिस मौजूद बे मजदूर मच्छर कॉलोनी में अवेश शेख के घर जी मरम्मत जो कम करे रहा हुआ त घर जी छित किरण सबब मलबे हेठा दबजी फोत थिया। उमरकोट जी अदालत भरसा सरकारी क्वार्टर मां नौजवान गलो कपियल हालत में हथ जख्मी हालत में मिलियल नौजवान आलम पुट उमर के अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। पुलिस मूजिब नौजवान खिपरो भरसा ॻोठ मथवण जो रहवासी आहे। नौजवान आपघात जी कोशिश कई आहे। मथस हमलो थियो आहे। जांच जारी आहे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: और उसका इंतजार कर रही हूँ।
1: थैंक गॉड शी इज हियर। सिस्टर मैं आपका 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। ओके जान आई एम ऑफ नाउ एंड आई विल सेंड यू सम फूड। सिस्टर इनका ख्याल रखिएगा। हाँ आई एम जस्ट कमिंग।
2: आपकी ड्रिप चेंज होने वाली है, मेडिसिन लिए आपने?
3: जी कल रात से बड़ी बेचैनी हो रही है। I can't seem to sleep. मुझे लगता है दवाइयों का साइड इफेक्ट है।
2: कभी कभी बिला वजह बेचैनी हो जाती है।

तव्हांखे रिज़ल्ट ॾे पई सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ ॿ रातिन जे इस्तेमाल सां. सो ॿ रातूं अगरि तव्हां इस्तेमाल कयो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम, त तव्हांखे सफ़ा परफेक्ट रिज़ल्ट मिली वेंदो. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका हर स्किन वारो माण्हू इस्तेमाल करे सघे थो. उन खां अलावा अगरि तव्हां मर्द हज़रात आहियो, ख़वातीन आहियो, हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करे सघे थो. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो ऐं ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत ॾेखारिजो बाबा. अगरि ईअं बि सीन आहे त तव्हां पाण नथा इस्तेमालु करे सघो, चलो कोई मसलो आहे, कोई इशू आहे, त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु नथा करे सघो, त तव्हां कंहिं पंहिंजे पिरी प्यारे खे गिफ्ट बि ॾेई सघो था. हाओ सही ॿुधव तव्हां. अगरि कंहिं पिरी प्यारे खे तव्हां गिफ्ट कंदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम, त हिन सां बि मुहबतूं वधंदियूं आहिनि. उनखे चओ बाबा त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका मार्केट में अवेलेबल थी वई आहे ऐं ॾाढो भलो प्रोडक्ट आहे, तव्हां ज़रूरु इस्तेमालु करे ॾिसो. अॻिलो माण्हू जेके तव्हां गिफ्ट कई उहो जॾहिं इस्तेमालु कंदो न, त हुनखे ख़बर पवंदी वाक़ई बाबा. ऐं पोइ तव्हां भले हुनखे हिकु डबी ॾींदा न, पोइ हू पाण पियो वठंदो बाबा. डी स्किन ब्यूटी क्रीम एॾी भली आहे. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां बि इस्तेमालु कयो ऐं माण्हुनि खे बि भई ॿुधायो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कर. जंहिंजे घरनि में शादियूं आहिनि या फिर तव्हांजी पंहिंजी शादी थी रही आहे, तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करणु शुरू करे छॾियो. ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराइणु चाहियो था, तव्हां कहिड़े बि सिटी खां तव्हांजो तालुक आहे, कहिड़े बि ॻोठ खां तव्हांजो तालुक आहे, तव्हां घर वेठे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सघो था. का घणी महिनत न लॻंदी, बसि तव्हांखे ही नंबर जेको ॿुधायां पियो, हिन नंबर ते राबितो करिणो पवंदो. नंबर ते राबितो करण खां फौरन बाद ई तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल थी वेंदी. सो नंबर आहे, नोट करे वठिजो.

बिल्कुल जी, सो नंबर से रातो कयो पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो ता वनी आसानी सा परचेज करे जो ठीक आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे कताने खूबसूरती जला डाडी जरूरी आहे, तमा सब इस्तेमाल करे सगो ता हर स्किन जे मुताबिक आहे आई तमा की यकीन डाडो फायदो पहुचंदो। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे जेका तमा इस्तेमाल कयो पया, बुधायो मुखे हाल अहवाल किथे पोती केर केर इस्तेमाल करे पयो, इस्तेमाल कया या फिर अन्या खाली सिर्फ बुधो पया, मतलब सोचो पया ता हां असा भी वठी इंदासी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जल्दी कयो बाबा वठी जो आईती, अगर असा तमा जे मैसेज दी तरफ अचू था ता पैनल ते तमाजा खोट सारा मैसेज जमा थी वया है आई पैनल ते असा के ज्वाइन कयो आही। सब का पहले असा के मैसेज मिला कश्मीर से अखलाक बलूच कहते हैं प्लीज प्ले ओके तमाम गानो लिखियो आ मां बिल्कुल कोशिश किया दी तमाजी पसंद जो गानो हलाइंदा सी। और हमारे साथी जी सिद्रा मुस्कान अस्सलाम वालेकुम मौलाना सलामत बेवस बलूच दरगाह साईं जमाल शाह मोरो से आपका शो बहुत अच्छा है और आपकी आवाज माशाल्लाह इलाही भली आए। सो थैंक यू वेरी मच प्यारा भा तुम मोहबतू आए डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल कंदा रह जो। और शहर गुलाब लगारी गोठ बाशम खान रिंद से शायर गाजी खान रिंद हैं फैजान अली रिंद ओके जी आपने लिखा है कि आपका शो जबरदस्त है, थैंक यू वेरी मच जी भाई आपको वेलकम कहा जाता है। ये मौजूद है हाय आप ही हेलो आप कैसी हैं। सुल्तानपुर से सितारा हमारे साथ है ओके जी सितारा कहती है योर शो इज वेरी नाइस आप ही जान प्लीज प्ले मास्टर मंजूर का सॉन्ग सुनाओ ओके मां दिसा थी तमाम जिला मास्टर मंजूर जो भलो गानो हलाए वठना से ठीक है। और ये हमारे साथ है अच्छा जब आप पैनल पर मैसेज किया करें ना तो अपना नाम लाजमी लिखा करें, बिना नाम के जब आप मैसेज भेज दें तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ ये किसने मुझे भेजा है। अच्छा गुलशेर बाबर हमें कहते हैं कि मुजम्मिल बाबर विलेज अल्लाह वरायो बाबर खां तां जो प्रोग्राम बुधो पिया तुहांजो मैसेज मूंखे लॻे थो अॻे ते मिसिंग पार्ट थी वियो आहे पर मूंखे एतिरो मिलियो आहे सुभाणे जो मोहबतूं आहिनि तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया। और ये कहते हैं कि आपका प्रोग्राम रोज़ सुनता हूं वेरी नाइस आपकी मुस्कुराहट अच्छी है ओके जी नाम तो आपने अपना लिखना भूल ही गए बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं जी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कीजिएगा। और हमारे साथ हमारी फजली कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैं ठीक हूँ जी आप बताएं कैसी हैं। कहती सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब सुनने वाली सिस्टर्स को। और कहती टॉपिक क्या है जानी, टॉपिक मैंने फजली आपसे पूछा है, वैसे आपने नहीं सुना इतना टाइम इतने टाइम से प्रोग्राम सुन रही है तो सवाल हाँ बिल्कुल रिपीट करते हैं जिन लोगों ने अभी भी प्रोग्राम सुना है स्टार्ट किया होगा उनको भी पता होना चाहिए। तो आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कि हम डेली बेसिस के ऊपर कितने सारे झूठ बोलते हैं ना, बोलते ना बिल्कुल से। तो आप मुझे बताएं कि अगर फर्ज कर लीजिए एक झूठ बोलने पर 100 रुपए की फाइन लगती तो आपको क्या लगता है कि आपका एक दिन का हिसाब काथे वनी पहुंचे। हाँ तमाम केतरा कूड़ गलाईंदा है तमाम डिपेंड करे तो मुखे बुधायो हक नियम में तमाम जो हिसाब किथे पहुंचे या बुधायो त खबर त पवे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कया कोन अगर मैसेज कर पाया तो यो लाजमी बुधाए छो। उनका अलावा ही डाडो भलो गानो लिस्ट में लगाया हुआ सो गानो बुधूं था।

मकसूद मल्हा कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत अच्छी है सिद्रा मुस्कान, मुझे शमन का गाना सुनाना। बिल्कुल जी, आपको शमन का गाना सुनाते हैं। और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बात है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप मुझे मैसेज कर रहे हैं सारे लोग, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में भी बता दिया करें, जैसे मकसूद मल्हा ने बता दिया है। ओके जी, आपको वेलकम कहा जाता है। साथ ही साथ बाकी जो लोग हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए।

ओके जी, गानों में समझने की कोशिश क्या पे पर चलो मोरो तो समझ में आया, पर अगति अलाये मोरो शहर छनी बने तो या अच्छे ही पो गाल समझ में कोई। चलो मोरो में भी तवे डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से मिली वी अगर तुम मोरो वनो पाया या मोरो छो पाया तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जरूर वा वो पा सा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी मूल इस्तेमाल कन पाया बाबा सवा सोना थी वाया तो तुम भी इस्तेमाल कर सोना सोना थी वे रीस को अचीव भला यार। अच्छा गुलाम फरीद बलोच लिखते हैं कि कुछ चीजें मालूम नहीं महसूस की जाती हैं, जैसा कि किसी की जिंदगी में अपनी जगह, बदलता रवैया, लहजे में बेजारी और अजनबियत। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कासिर खान कहते हैं राजा लंदन का ओएसटी लगा दो, बिल्कुल सी लगाते हैं। पर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद समान भाई लिखते हैं कि नेटवर्क खराब था नी तो हर सवाल का जवाब है बुआ जी क्या मतलब। अच्छा नसीम गुलाम हमारे साथ हैं, कहते हैं कि जब वक्त खराब चल रहा होता है तो पीछे से हंसने वाली आवाज जाने पहचानी लगती है। क्या बात है जी, क्या बात है, कितनी कमाल बात आपने बोल दी है और बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहा जाता है। किशोर भाई कहते हैं कि अगर तू चाहे पोस्ट के लाइक एंड शेयर करण वारन के 100 रुपया दींदस तो इससे केतरा लाइक एंड शेयर था मिले बिल्कुल ता सही था चो। और रमजान भाई कहते हैं कि सलाम बहना कैसी मुलाज इस्लाम अदर, मैं कल आपसे गाने की फरमाइश कर चुका था। बिल्कुल जी, आपने गाना बोला मेरे ही पास, तुम इतने थके हुए गानों की फरमाइश मुझसे करते हैं तो वो मैं नहीं लगा पाती हूँ, तो अच्छी अच्छी गाने फरमाइश किया करे जो सुनकर सबको अच्छा लगे। और नसीम गुलाम भाई कहते हैं कि गोट अली बख्श जकड़ो नूरियाबाद से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कहते हैं घने टाइम खां अपोय नजर आया आयो नूरियाबाद FM ते असा थकजी वया से इंतजार करे। हाँ कुछ टाइम पहले वाकई नूरियाबाद ते मुझे प्रोग्राम यही कनेक्ट थियो, जी यही प्रोग्राम कनेक्ट थियो है। सो थैंक यू तवा के याद आया, मुखे लगो नूरियाबाद वारे मानन विसारी छडी हुंदो थैंक यू बुद्धि करे लाइ सुठो लगो थैंक यू। अच्छा ता हाँ नूरियाबाद में भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सगो था, डी स्किन ब्यूटी क्रीम बस वनो पानी करे भी जनरल स्टोर से मालूम वो तवा के मिली वेंदी है, मिलन का पोए ता मुखे बुधाए जो ता बाजी असा भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी आया है। एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल करना तरीके कार शाहिन या फिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवा छो इस्तेमाल कयो पया यो बिल्कुल सही प्रोग्राम में ताके बुधाईंदी अचा पई। डी स्किन ब्यूटी क्रीम मर्द मायूं हर कोई लगाए सके तो, या भी जेका कंफ्यूजन होंदी आ बाबा असा लगाए सगू था या नथा लगाए सगू छो, तो काफी मानो जी स्किन घणी सेंसिटिव होंदी आ तो तमा जे लाए भी आए बाबा, छो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की तैयारी ये कयो वयो आ जो हर स्किन जे मानो लगाए सके तो। आई मेडिकेटेड फार्मूलो आ है स्किन जा जेके डॉक्टर हुंदा है ना उन्होंने ही फार्मूलो तैयार कयो आ है, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम 2-in-1 क्रीम आ है, तमा इस्तेमाल कंदा तो तमा के रिजल्ट मिलंदो एड़ो जण ता फेशियल कराया आ है। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम

0: बिल्कुल जी असा तुझे ताबेदार पर जदी दा डीस्किन ब्यूटी क्रीम वठना पो असा के गाल खबर पंदी तो वाकई ता ताबेदार आयो। अच्छा फहीम भाई कहते हैं कि दादा ऐसे टॉपिक रखकर आप ये जानना चाहती हैं कौन कितना झूठा है। मेरा आंसर भी तकरीबन 1000 पक्का। हाल यो सही मतलब लिमिटेड आयो थोड़ो एडो ना है यानी कि तां वेही अगर ई हुजिया वाके मानो एकड़ो कूड़ गला है यहां त 100 रुपयो फाइन देनो पवे त दोस्त में वेही करे खबर त जके ड्राड़ी मानो जना ओ केड़ी ड्राड़ हणा त तो खबर आ मकीड़ो अमीर आ मा डेली 2-3 हज़ार जो कूड़ गलेंदो आ मानू चवंदा वाह वाह वाह वाह वाह वाह बाकी अमीर आहे डेली 2-3 हज़ार जो कूड़ ॻाल्हाए थो।
1: मुंहिंजी त शराबी आहे वो अखियुनि जा ठार ताबेदार
0: ऐं मां त वरी कुझु माण्हू अहिड़ा बि ॾिठा आहिनि जेके कूड़ ॻाल्हाईंदा त उन्हनि खे न फ़ख़्रु महसूसु थींदो त असां कूड़ ॻाल्हायो आहे। ॾिसो ॾिसो मां केॾो भलो कमु कयो आहे पर हालांकि इहो भलो कमु न आहे बाबा कूड़ घटि ॻाल्हाईंदा कयो ऐं उन खां अलावा अगरि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो था त बिल्कुलु मूंखे ॿुधायो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणण वारा माण्हू सफ़ा सुहिणा थी विया आहिनि। इन ॻाल्हि में को शक कोन्हे को डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिन जिन लॻाई आहे मां उन्हनि खां पुछा कयो उन्हनि चयो वाह साईं वाह अहिड़ो प्रोडक्ट असां कॾहिं कोन लॻायोसीं जेको असां हाणे लॻायूं था डी स्किन ब्यूटी क्रीम।

0: भाई लिखते हैं कि सारे दुनिया के सारे लोग आपको अपने फायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ आपका रब ही है जो आपको अपने फायदे के लिए चाहता है। जो इस बात से एग्री करता है वो रिएक्ट करें दिल लगाकर। दिल लगाकर तो खैर आप मेरी पोस्ट को रिएक्ट कीजिएगा, और वैसे हम एग्री करते हैं इस बात से। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और उनके अलावा नसीम गुलाम भाई कहते हैं सॉन्ग सुनाए, कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था। माँ कोशिश क्या थी, वैसे हिनमला ताई माँ केंजी भी फरमाइश कौन लगाई या लिस्ट में अज माइयो मूड उठाया ये समा के जो भी गानों जो प्रोग्राम में कौन हलाई में से अक्ते डिजम था वो अखे ले जा था सबेदार थोड़ो बाबा फरमाइशन थी ब्रेक लगाई ना कयो ब्रेक समझो था ब्रेक ते पेड़ हो जे। बिलाल अली हमारे साथ है कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम अस्सलाम जनाब मोहतरम, आपको वेलकम कहा जाता है। यदि काश कोई मेरा भी वेट करता। जी जी बिल्कुल आप हमारे प्रोग्राम में आया करें डेली। और संजय जी पाल हमारे साथ है, संजय जी पाल आपको भी वेलकम हो गया। और नसीम भाई कहते असा अज वठी वठू था, अच्छा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तुम अज वठो था, बिल्कुल वाह वाह वनो वनो वठी चो वठी चो। हिदायतुल्लाह कहते कि मुझसे नहीं विसरता तुम्हारा प्रोग्राम, चाहे नूरियाबाद पर हो या 88 लाड़काना पर। वैसे मैंने भी देखा है ऐसे लोग जो कूड़ मारते हैं और अपने अपने पर नाज करते हैं। हाँ बिल्कुल या गाल आए हकीकत आए अल्लाह, पर चलो खैरा तुम बुधायो हाल अवाल डी स्किन ब्यूटी क्रीम कने था लगायो। अच्छा ये है ठरी मीरवा से मोहम्मद इब्राहिम खास के लिए कहते अदी सिद्रा अच्छा कहते खैरपुर वारा कावड़ जी वया आहिन, खैरपुर वारा कावड़ जी वया आहिन ई हरू भरू। चलो राजी ये थी ना जरी तमा उनन के डी स्किन ब्यूटी क्रीम गिफ्ट कदा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम खैरपुर वारन के तोहफो दियो बाबा, खैरपुर वारा जल्दी में राजी थी वेना तां सा। और बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ है। और ये कहते हाय मैडम आप कैसी है, प्लीज प्ले शमन का गाना। और हसन देपारजा से सिंध की रानी आप कैसी है, हसन अली हसन मेहरापुर से हमारा शो सुन रहे, ओके जी आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है। मेहरापुर में भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, तो जाइएगा और परचेज कीजिएगा। टाइम हुआ है जनाब यहाँ पर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आप भी कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए पूरे पूरे तीन बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आ रही हूँ। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड इन पीपल लिसनिंग। व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए और हसीन हो जाइए।
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by. अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए, आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
2: सखर के हो
3: तो आवाज भी सखर की है, सुनते रहो
2: CFM 88 अहां जे पहले शहर सखर आई रोड़ी में।
4: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
6: पहजो शहर पहजो घर सकरंट, आई सकरंट जो आवाज
7: GFM 90.8।

0: सुन रहे हैं YTH and D-Skin Beauty Show sponsored किया जा रहा है YTH Beauty Products and D-Skin Beauty Products के तावन से. क्यों हिला दिया ना?
1: बुद्ध बुद्ध

चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में, जो लोगों ने अभी अभी सुनना स्टार्ट किया या फिर स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन नेहरापुर मादली नारी टूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप हमारे साथ मौजूद है।

कितना प्यार गाना सुनाया, ॾिसो ॾिसो जे तव्हां फरमाइशूं न कंदा आहियो न पोइ मां एॾा भला भला तव्हांखे गाना ॿुधाईंदी आहियां. 1900 मास्टर मंज़ूर जी गाने जी भी फरमाइश हुई त मूं ही रैंडमली गानो जेको लिस्ट में लॻाए छॾियो, हिन गाने खे ॿुधंदासीं. उन खां अलावा अगरि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करणु चाहियो था त तव्हांखे थोरो ॿुधाईंदी हलां त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे तव्हांजी ख़ूबसूरती जे लाइ छो ज़रूरी आहे. क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाइण वाले लोग बड़ी ख़ुशि हुई भई अपनी ज़िंदगी में, तो हम भी ये चाहते हैं कि आप जो लोग हमें सुन रहे हैं आप सारे लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा पाकिस्तान में प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट बन चुका है जो कि भाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर के ममालकात में भी आपको मिल जाएगी. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर मिनी बीट्स है, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फा आर्बुटीन है, कोचिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम बनी है. आप ये तमाम चीजें इमेजिन कीजिए कि कितने अच्छे कोई प्रोडक्ट के अंदर ये चीजें ऐड की गई होंगी, वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर भी ऐड है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप लगाना चाहते हैं तो बेशक लगाइए. और ये जनाब 2-in-1 क्रीम है, यानी कि ये नाइट क्रीम है लेकिन आपको जो रिजल्ट देगी वो फेशियल वाला देगी. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको बहुत सारा अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट कर रही है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए. वैसे कहते हैं ना खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश होती है लेकिन खूबसूरती के साथ अपनी जिल्द की मुनासिब केयर भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है. अगर आप भी रोजमर्रा की ब्यूटी केयर रूटीन में एक खूबसूरत इजाफा करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत अच्छा ऑप्शन है जनाब. और अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं डी स्किन ब्यूटी क्रीम को. ये क्रीम आपकी रोजमर्रा स्किन केयर को मजीद आसान और खूबसूरत बना देगी और बेहतरीन इंतखाब भी हो सकते हैं. अगर आप अपनी जिल्द को नरम मुलायम मॉइस्चराइज रखना चाहते हैं, अपनी स्किन केयर करना चाहते हैं, खूबसूरती में आप हमेशा आगे रहना चाहते हैं, रिंकल फ्री स्किन चाहते हैं, एक्ने फ्री स्किन चाहते हैं, बेदाग गोरी गोरी स्किन चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा क्योंकि अच्छी तरह आपकी स्किन केयर हो जाएगी और आपके जल्द के चेहरे की जो ताजगी है ना और निखार है ना वो भी वापस आ जाएगा. खूबसूरती सिर्फ मेकअप का नाम नहीं होता, ये मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, बल्कि आपकी जल्द की जो मुनासिब केयर होती है ना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है. तो रोजाना अगर आप अपने लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाते हैं, आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं कि भाई आप बैठ के फेशियल लगाएं, ये करें वो करें, या फिर उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है, पैसे भी बहुत ज्यादा लग जाते हैं, तो बस एक ऐसा काम करना है आपने, डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करनी है. डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करने के बाद जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको एहसास हो जाता है कि वाकई भाई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. ये मेडिकेटेड फार्मूला है और हर स्किन के ऊपर है. आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा.

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो कि आप एंजॉय कर रहे के साथ साथ यहाँ पर आपके मैसेजेस की जाने बातें हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम बाजी, हमने फरमाइश की थी नाहिद अख्तर के गाने की, मैंने शायद उस दिन या अगले दिन आपकी फरमाइश का गाना लगा लिया था, कहते हैं कि चले हाँ आपका गाना जो है ना हम सुन लेंगे, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। और ये जनाब कहते हैं मैडम कैसी है आप, प्लीज प्ले शमन का गाना, अली हसन देपारजा से हमारे साथ हैं। बिल्कुल अली हसन भाई आपके लिए गाना लगाते हैं, थोड़ा सा सबर कीजिए जरा। अच्छा हिदायतुल्ला कहते हैं कि जने गिफ्ट करें आप भाई, छो था सभी के गुमाना था मा तांके गिफ्ट कंदे से, बिल्कुल मा तांके गिफ्ट न कदम ताके थोड़ो खर्च करनो पंदो खर्च कयो वन्यो बाबा डे स्किन ब्यूटी क्रीम वठी छो ये केडी शराब बता सब मुजो आसरो करे बैठा आयो मा ते दुकान खोलियो चाबला बाबा तां सबनी जी करीबी जन स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल आए, बस थोड़ो कष्ट कयो वन्यो ई वनी वठी अचो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तां के मुनासिब कीमत में मिलंदी, एडो कोई न जो रेट कोने को एडी का न जी कीमत कोने का जो तां अफोर्ड न करे सको, मुनासिब कीमत हु आए तां के डी स्किन ब्यूटी क्रीम जडे ना वठना त तां के खबर पेजी वेनी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कयो, सोना सोना थी वजो समझो था।

नसीम भाई कहते हैं कि कूड़ गालहाइण पहिरियां गुनाह आ पर फाइन लगे तो मानो कूड़ गालहाइण छडे वेंदा बिल्कुल तां सही था चो और किशोर भाई कहते हैं अदा तो कदे सोचो आ तोखे केतरो फाइन लगदो मां भी मड़ई रे ड्राडा ना त 3-4 हज़ार जो कूड़ त मां डेली गले मजाक ते गया कोशिश करना है तो कूड़ न गालू समझो था कोशिश करना करो अच्छा रिजवान भाई आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है। अच्छा नसीम भाई कहते हैं कि वक्त बदलजी वेंदो हालतों भी बदलजी वेंदियो पर जेके दिल में घर करे वेंदा से मानू कदे भी विसरी ना इन सगदा इज्जत लफ्जन सा न किरदार सा मिलंदी आए मोहब्बत दुआन सा न वफा सा साबित थी आए वाह वाह वाह वाह वेरी नाइस अच्छा बिलाल कहते हैं कि समझ नहीं आता किसी को अपना कहूं सब अपने होकर भी पराए लगते हैं हाँ भाई हाँ या गाल आहे यो तां सही था चो बोला कड़ो कड़ो गानो ना अपनो का मेला है पर ऐसा अकेला है सो बिल्कुल हुआ ही गाला असांगे ते आसपास सब पांचा नजर अचन था पर अलाए छो ये दिल चवे थी ता अकेला आयो ओके सो एकड़ो ही डाडो भलो फायसा ची आवाज में गानो लगायो आजकल ही गानो मखे वणे थो सो अचो तने गाने के बुदू था

करना बाबा एड़ी भी गाल कोने का। अच्छा रमजान भाई भी आसरो करे वेठो आता दी मुखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम गिफ्ट कंदी। अच्छा अखलाक भाई कहते हैं कि फाइबर का जमाना है, अगर सदरा का शो सुनना चाहते हैं तो फाइबर लगायो बाबा फाइबर। और फहीम भाई कहते हैं कि भाऊ आज हम पर ना जुल्म हो गया है, ना नेट चल रही है ना वाईफाई चल रही है, एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं ऑफिस में। अरे भाई हाँ ये मसला कभी कभी हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए।

हां जी दिल बच्चे बच्चे बच्चे वाजो गानो तवां के भी सठो लगो हुंदो आईडी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई ना वा बतांगे सठी लगंदी सठी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो इन सणे सणा थी वणो अच्छा मर्द मायो सभी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सगन था सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जगह ता खबर है त मेरी केडेड फार्मूला है यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के स्किन जा जके डॉक्टर हुंदा है ना उन्हने तैयार कयो आहे यानी कोई भी टेंशन जी गाल ना है त बाबा इनमें केमिकल हुंदो हे हुंदो हो हुंदो ता बेफिकर थी करे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सगो ता

हेलो बाबा हलो छुट्टी करायो फायजा वारो गानो भी लिस्ट में आए सो बिल्कुल शमन जो गानो भी बुधनासी अपास महरा से सगर मौजूद है अपास महरा तांजो मोहब्बतवान प्रोग्राम उदो पया बाबा और कौन हमारे साथ ही फरवा हमारा शो सुन रही है फरवा आपको वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने पोस्ट को लाइक और शेयर किया कर दें जरा थोड़ा टाइम बचाए हमारे पास अच्छा यानी तां सब जिद करे वेठा आयो न कयो बाबा जिद न कयो जिद न कयो न न किशोर भास 3-4 हज़ार रही एडो ज्यादा न टेंशन न कयो परवा कहती आप ही मुझे भी हाँ जी आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप तोहफा दे सकती हैं सबको दें ठीक है और मुखा आसरो न कयो बाबा सुमाटो गोपांग कहते हैं वाह सिद्रा वाह कंबर सिटी से सुन रहा हूँ वेरी नाइस थैंक यू और फायजा का गाना आपको अच्छा लगा बहुत शुक्रिया बुद्धू था बाबा बुद्धू था अच्छा अदो कहते तो के जदे लगे तू अकेलो आही तो बस दिल ते हथ रखी यह हकीकत है बहुत शुक्रिया थैंक यू अपनायत के लिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के लिए भी क्योंकि आप इस्तेमाल करने वाले हैं ओके जी और इसी के साथ हम आप लोगों से इजाजत भी लेंगे क्योंकि हमारे जाने का वक्त करीब आ चुका है वरना

चवां त भाॼी तव्हां त गानो ॿुधण ॾियो ई कोन था, सो तव्हांखे गानो ॿुधण ॾींदासीं ई, तव्हां खां इजाज़त वठूं था। वरी तव्हां सां मुंहिंजी मुलाक़ात जेका थिए पई 5 बजे वारे प्रोग्राम में थिए पई, सो पंहिंजो हेॾो सारो ख़्यालु रखंदा। हिते का ग़लती थी हुजे त माज़रत कयूं था, जंहिंजा फीडबैक रहिजी विया आहिनि, जंहिंजा गानड़ा शानड़ा रहिजी विया, सभिनी खां माज़रत कयूं था। सो मोकिलाणी नाहे बाबू, सलामत सां सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय, लव यू।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: लॉजिस्टिक सहूलत लाइ मौजूद आहे। पाकिस्तान सऊदी ते हौसी हमलनि जी मज़म्मत करे चुको आहे। अफ़गान शागिर्दनि ते बि पाबंदी वारियूं ख़बरूं दुरुस्त न आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ आटो पॉलिसी 2026 जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। ऐलान IMF जी मंज़ूरी बाद कयो वेंदो। आटो पार्ट्स जी बरामद वधाइण लाइ आलमी वैल्यू चैनल सां कंडण ऐं 5 वॾा एंकर मैन्युफैक्चरिंग इदारा ठाहिण जी तजवीज़। बरामदी आटो पार्ट्स ते दर आंदी ड्यूटी ख़त्म करण जी बि सिफ़ारिश थियल। उर्दन में अमेरिकी अॾे ते ईरानी हमलनि जे नतीजे में अमेरिका जे केतिरनि ई फ़ौजी जहाज़नि खे नुक़सान पहुतो आहे। अमेरिकी मीडिया तसदीक करे छॾी आहे। CBC न्यूज़ पंहिंजी रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त ईरानी मिज़ाइल हमलनि में अमेरिका जा F-15 जहाज़ A-10 थर्ड बुलेट मुतासिर थिया आहिनि, जॾहिं त कंहिं बि अमेरिकी फ़ौजी खे नुक़सान नाहे पहुतो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो तुर्किया जे परॾेही वज़ीर सां राब्तो। ॿिनि तरफ़नि लाॻापन समेत खिते जी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कई वई आहे। परॾेही खाते मूजिब इसहाक़ डार ऐं हाकान विच में ओभर जी तब्दील थींदड़ सूरत हाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई आहे। सूरत हाल ते सिफ़ारतकारी वारो सिलसिलो जारी रखण ते इतफ़ाक़। वज़ीर आला हाउस में भुट्टो स्टेम स्कॉलरशिप बाबति प्रोग्राम। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह, तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह ऐं ॿियनि जी शिरकत। तक़रीब खे ख़िताब कंदे सैद मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध जे चूंडियल हुशियार शागिर्दनि खे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ण जो मौक़ो मिलियो आहे, जंहिं लाइ रक़म सिंध हुकूमत ॾेई रही आहे। तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह चयो आहे त ऑक्सफोर्ड ईंदड़ 5 शागिर्दनि जे कुलनि ते डिग्रियुनि सां गॾु सिंध जूं बि उमेदूं वाघियल आहिनि। उमेद आहे त शागिर्द सिंध जो गाट ऊचो कंदा। सिंध जो घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार तलबीअ ते मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमिशन आॾो पेश। ज़ियाल अंजार एडवोकेट जनरल जे रवैये ते गैर मशरूत माफ़ी वठी छॾी। जस्टिस उमर सियाल चयो आहे त अव्हांखे घुराइण जो मक़सदु वारसनि ऐं अवाम जो एतमाद बहाल करणु आहे। एडवोकेट जनरल जो रवैयो गैर ज़िमेवाराणो ऐं तसेक आमेज़ हो। घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार चयो आहे त सिंध हुकूमत केस जी शफ़ाफ़ जांच चाहे थी। कमीशन जो नतीजनि ताईं पहुचणु ज़रूरी आहे। ज़िमेवारनि खे मुंतक़ी अंजाम ताईं पहुचायो वेंदो। सीनियर वज़ीर शर्जीली नामेवर जी सदारत हेठि ट्रांसपोर्ट खाते जो इजलास लॉजिस्टिक पार्क जे क़याम ऐं 500 EV बसिस जे ख़रीदारी लाइ काबीना खां मंज़ूरी वठण जो फ़ैसिलो। शर्जीली नामेवर चयो आहे त लॉजिस्टिक फार्म जो क़याम कराची वासना इनकलाबी कमु हूंदो। शहर ताईं हैवी ट्रैफ़िक जो दॿाउ घटि थींदो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जान है तू दिल तुझ पे फिदा है तेरी कसम। अजय उमराणी साहब का पूछूं तो उन्हें कें जो कसम खाई पंज दिल के फिदा कयो। जी उमराणी साहब जबरदस्त तमा जो सॉन्ग तमाम घणो सुठो हो मुखे त डाडो सुठो लगो ए जितरा भी आशिक हैं आई एम श्योर उन्हें के भी यकीनन सुठो लगो हुंदो ओए ते बिल्कुल ही फिदा थी विया हुंदा
3: वल्ला आलम।
2: अच्छा उमराणी साहब तमा जो इनन में सॉन्ग में वर्ड चया हैं ये एक त माच मन्याती ते शायर बे के जान पर तमा इतरी दिल जी गहराई सा गाइंदा हो उन वक्त तमा जी फीलिंग्स छा हुंदी हैं।
3: हाँ सदब जे टाइम हिचरी उगाई दुआन पंजी मस्ती में पो मुखे पो पंजो महबूब आडो भींदो है ही करे माने महबूब की दिसी करे गाई दो है पो गीत खणी का जो बजे मा पान के बंदूक का पान हणदो है।
2: अच्छा ब्रांड साहब तमा हण सके नेक्स्ट गीत केडो बताई दो
3: मुझे हथन ते ने मेहंदी में हन आशिक जोरत शामिल आ तुझे छिनन में कुछ धारन कुछ पहजन जो हथ शामिल
2: है। वाओ
3: जुल्फकार मगी साहब जी तमा के बधाई दस यार
2: उमर साहब तमा के मेहंदी सुठी लगंदी है छोकरी ने हथन ते लगल
3: महबूब ने हथन ते हर शे सुठी लगदी
2: है। वाओ माशाल्लाह डाडो सुठो सॉन्ग है एक उम्मीद है यकीनन तमा चने गाइंदो त असानी ऑडियंस के भी डाडो सुठो लगंदो। अजो त नाजरीन ही गीत बुदू

सरकार हथा ते मेदी, हथा ते मेदी सजा तू बैठई, ते लाल जोड़ा पा तू बैठई, सुमार पलारी दा प्यार भूल के जिंदगी कर मेरी तबाह तू बैठई।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: मेहरान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जिए मुह जो ओ यार मुश्की वो जिए मुह जो
2: हाय हाय हाय
1: ओ यार मुश्की।

0: सुतुबीरन जा नापाक इरादा आहिनि सिंध खे तक़सीम करण जा
1: पर सोचूं था त सिंध जी विरासत न पर असां सिरनि जी विरासत कंदासीं
2: सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ सिंध जे वसीलनि ते कब्ज़ करण जी साज़िश
1: आहे सिंध जो विराम असांजे नामंज़ूर आहे
3: धरतीअ जो इंच इंच जी हिफ़ाज़त कंदासीं ऐं उन जो सबूत आहे जो ख़्वाब ॾिसंदा सिंध खे टुड़ण जा इन जा इहो ख़्वाब असां चटना चूर कंदासीं सिंध जा मज़दूर सिंध जा हारी सिंध जा उस्ताद सिंध जा शाइर अदीब वकील पहुचे हूंदा।

वकील एक आवाज मुतद सिंध जो वाज़े पैगाम सिंध बार जे सिंध यूनिटी डे वारे सर ते वकीलन पारां अदालती कार्रवाई जो बायकॉट ऐं मुज़ाहिरा कराची खां कश्मोर ऐं कारूंजर खां केटी बंदर ताईं को बि वकील कंहिं बि अदालत में पेश न थियो। कराची हैदराबाद में पुखास शहीद बेनज़राबाद सखर ऐं लाड़काणे डिवीज़न जे समूरनि नंढनि वॾनि अदालतनि में को बि केस न हलियो। नंढनि वॾनि शहरनि में वकीलनि जा मुज़ाहिरा सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं बंदि करण जो मुतालबो। वज़ीर आला हाउस में भुट्टो स्टेम स्कॉलरशिप बाबति प्रोग्राम वरी वज़ीर सैद मुराद अली शाह तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह ऐं ॿियनि जी शिरकत तकरीब खे ख़िताब कंदे सैद मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध जे चूंडियल होशियार शागिर्दनि खे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ण जो मौक़ो मिलियो आहे जंहिं लाइ रक़म सिंध हुकूमत ॾेई रही आहे। तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह चयो आहे त ऑक्सफोर्ड ईंदड़ पंज शागिर्दनि जे कुलनि ते डिग्रियुनि जा गॾु सिंध जूं बि उमीदूं वाघियल आहिनि। उमीद आहे त शागिर्द सिंध जो गाट ऊचो कंदा। सिंध जो घरू वज़ीर सियाल अंजार तलबीअ ते मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन आॾो पेश सियाल अंजार एडवोकेट जनरल जे रवैये ते गैर मशरूत माफ़ी वठी छॾी। जस्टिस उमर सियाल चयो आहे तव्हांखे घुराइण जो मक़सदु वारसनि ऐं अवाम जो इतमाद बहाल करण आहे। एडवोकेट जनरल जो रवैयो गैर ज़िमेवाराणो आहे। घरू वज़ीर सियाल अंजार चयो त सिंध हुकूमत केस जे शफ़ाफ़ जांच चाहे थी। कमीशन जे नतीजनि ताईं पहुचणु ज़रूरी आहे। ज़िमेवारनि खे मुंतक़ी अंजाम ते पहुचायो वेंदो।

शर्जिली नामे वज़ारत है ट्रांसपोर्ट खाते जो इजलास लॉजिस्टिक पार्क की क़याम में 520 बसिस के खरीदारी लाए काबिला का मंजूरी वठण जो फैसलो शर्जिली नामे वर्चो है। लॉजिस्टिक फार्म जो क़याम कराची वासी ला इनकलाबी कम हों शहर ता हैवी ट्रैफिक जो दबाव घट थी दो। मीर रजा केस की जांच कदड़ अदालती कमीशन पारा डॉक्टर उसामा के जवाब से बेतमादी जाहिर 15 सितंबर से जाती हैसियत में तलब कमीशन SHO अदील अफजाद हेडमर जिशान डॉक्टर सीमा प्रोफेसर नसीम के 14 सितंबर से तलब कर वरतो। कमीशन के जिसार शहरी भी केस बाबत जान डेण शुरू कर छी है। एक शहरी पारा बाउंस अकाउंट भी जान फराम कर राज को जाहिर किया। बे शहरी डिजिटल फुटप्रिंट्स बाबत जान डी एक शहरी केस में मशकूक शख्स की भी निशानदेही कई। कमीशन जान डींद शहरी की सुना बुझे रखने जो फैसलो किया है। कराची के एहसाब अदालत क्लिफ्टन में प्लाट की गैर कानूनी अलाटमेंट वे केस में वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल बेन के नोटिस जारी कर छोड़ो। मुस्तफा कमाल बया 15 सितंबर से तलब एहसाब अदालत वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल SPCA के अगोणे DG इफ्तार कायम कानी अगोणे DCO फजल रहमान KDA के अगोणे DO मुमताज हैदर KDA के एडिशनल DO सैयद निशाद अली हैदरी मोहम्मद रफीक बया तलब किया वो। नवा सूबा तमाशो ए रोशो है। ही सूबा ठाण न पर सूबा खत्म करण की साजिश है। कें कुछ मू कराची के सिंध का धार कर चाहन था। SPB सरबराह डॉक्टर कादिर मंगसी है कराची की मिल्कियत आलमी अहमियत कब्जे वाली साजिश कें भी सूरत में कबूल न कंदी। 1 यूनिट ठाए सूबा खत्म किया वह हुआ इन वक्त भी नंढा नंढा यूनिट ठाण कब्जो कर साजिश है। सजे सिंध का आवाज है कौमी बकाल है पुरमन ए तारीखी जिदोजहद कई वी। इंग्लैंड खिलाफ सीरीज में कौमी टीम की खराब कारकर्दगी जांच शुरू। कौमी क्रिकेट मोहम्मद रिजवान ए मामून हक MCCIA आडो पेश। बे क्रिकेटर्स MCCIA के लाहौर ऑफिस में पेश थे। क्रिकेटर्स का इंग्लैंड सीरीज बाबत जांच रांदीगर मोहलत घुरी वरती। जरियन जो चवण है कि 3 क्रिकेटर्स के नोटिस जारी किया वो है। बेन रांदीगर जहा फोन PCB वट जमा थे हुआ जे MCCIA हवाले किया वह। टंडो अलियार के DC एंड सेहत खाते में तकरार तेज थी वो। MS डॉक्टर ड्यूटी HQ के 37 डॉक्टर समेत स्टाफ के 98 मुलाजमन इस्तीफा दई छी। डॉक्टर्स ए अमले पारा OPDs जो बाइका DC के गैर जरूरी मुदाखलत बंद करने मुतालबो एहतियात जो सिलसिलो जारी रखने जो चिताव। रोड़ी की मच्छर कॉलोनी में घर की मरम्मत दौरान छत किरण सबब मजदूर दबजी फोत थ फोत थे मजदूर में अजीब राहल आवासी शामिल है। पुलिस मूजिब बई मजदूर मच्छर कॉलोनी में अवेश शेख के घर की मरम्मत जो कम कर रहा हुआ तो घर की छत किरण सबब मलबे हेठा दबजी फोत थे। मीरपुर भठोरों में महमूद वाह ए बिगाड़ वाह में पानी की खोर खिलाफ धरणो जारी है। आबादगार मीरपुर भठोरों सजावट रोड से धरणो हो अखबारों है तो पानी की शदीद खोट है। धरणे बावजूद को भी अमलदार वटन लड़ी ना आयो पानी फराम न किया वो तो एहतियात जारी रखे वो। घोटकी की अदालत गोठाने के तशद्दुद ए तजलील वे केस में अगोणे SHO काबिल भयो की जमानत रद्द कर छी। अदालत में फरार थियण की कोशिश दौरान शहर बिरादरी के मानून काबिल भयो के पकड़े वरतो। चिकताण दौरान मचरियल मानून अगोणे SHO के मारकुट कर संदस कपड़ा फाड़े छड़ा पुलिस केस बचाए वरतो।

0: गंबट में वधंदड़ बदमनी खिलाफ़ वापारी बिरादरी ऐं शहरनि जो इतिहास प्रेस क्लब अॻियां धरणो। अॻवाणनि चयो त गंबट शहर समेत ॿियनि इलाइक़नि में बदमनी वधी वई आहे। फुरूं ऐं चोरियूं मामूल बणिजी वियूं आहिनि। चोरियुनि ऐं धाड़नि जा जवाबदार गिरफ़्तार करे शहर में अमुन बहाल करायो। ऐं टंडो मोहम्मद खान में जमियत उलमा इस्लाम पारां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट जी लताड़ ऐं करप्शन ख़िलाफ़ धरणो। जमियत उलमा इस्लाम पारां मेन बस स्टॉप खां मार्च करे प्रेस क्लब अॻियां धरणो हयो वियो। अॻवाणनि चयो आहे त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट जो कतलेआम कयो वियो आहे। शफ़ाफ़ जाच कई वञे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: दादो सुठो
1: जीए FM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: जो शहर बहजो घर सकरंट, आई सकरंट जो आवाज
3: GFM 90.8।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ ऑटो पॉलिसी बाज़ार छवी की मंजूरी दे छी ऐलान IMF की मंजूरी बात कर ऑटो पार्ट्स की बरामदाद बढ़ाने लाइ आलमी वैल्यू चेन से गढ़ण पंज वड़ा एंकर मैन्युफैक्चरिंग इदारा ठहण की तजवीज़ बरामदी ऑटो पार्ट्स से दरामदी ड्यूटी खत्म करने की भी सिफारिश थे में अमरीकी अडे से ईरानी हमलों के नतीजे में अमरीका के केतरन ही फौजी जहाजन के नुकसान पहुंतो है अमरीकी मीडिया तस्दीक कर छी CBC न्यूज पैंजे रिपोर्ट में जाना हुआ है तो ईरानी मिसाइल हमलों में अमरीका जा F-15 जहाज A-10 थंडर बोल्ट मुतासर थे जैसे तक कें भी अमरीकी फौजी के नुकसान ना पहुंतो पाकिस्तान ए सऊदी अरब जो दिफाई सहकार जारी है दिफाई वायदे से अमल दरामद लाए वक्त घुर्बल है परदेही तर्जुमान सजाद हैदर खान है तो पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी ए सलामती लाए हिमात जारी रखो पाक फोर्स सऊदी अरब में तरबियत ए लॉजिस्टिक सहूलत लाए मौजूद है पाकिस्तान सऊदी से मोसी हमलों की मजम्मत कर चुको है अफगान शागिर्दन से भी पाबंदी वाली खबरों दुरुस्त हैं नायब वजीर आजम सरकार जो तुर्किया के परदेही वजीर हकान फेदान से राबतो वितरफन लागापन समेत खत्े की सूरत हाल से गाल बोल परदेही खाते मूजिब इसाकदार ए हकान फेदान में विच ओवर की तब्दील थीदड़ सूरत हाल से खारज की देवट कई वही सूरत हाल से सिफातकारी वो सिलसिलो जारी रखने से इतफाक
4: इन नापाक इरादा सिंध के तकसीम करण जहा उन बिल्कुल खिलाफ आयो
5: सिंध जहा मू समझन था वादानत वार है
6: सिंध मामले सिंध से गद आयो कें भी पार्टी से गुड कदम भी न बिंदा
7: सिंध जो अवाम न अगे कभी सिंध के तकसीम करण दिनों न हाने दींदा
8: कुछ भी सिंध सिंध में डींदा
9: पर सोचू था सिंध की विरासत न पर असा सिरन की विरासत कंदी
10: सिर्फ और सिर्फ सिंध के वसील से कब्जे करने की साजिश
11: सिंध जो विराम असाज ना मंजूर है
12: धरती जो इंच इंच की हिफाजत कंदी
13: उन सबूत है जो ख्वाब दिखा सिंध के टुड़न जहा इन जो ख्वाब अगर चटना चुनाव सिंध जहा मजदूर सिंध जहा हारी सिंध जहा उस्ताद सिंध जहा शायर अजीब वकील फ्रंट पे हूं
3: सिंध बार के सड से सिंध जहा वकील एक आवाज मुतहद सिंध चौबा से पैगाम सिंध बार के सिंध यूनिटी डे वाले सड से वकील पारा अदालती कार्रवाई जो बाइकाट ए मुजाहरा कराची का कश्मोर ए कारंजर का केटी बंदर ताई को भी वकील कें भी अदालत में पेश न थो कराची हैदराबाद में पुखा शहीद में नजराबाद सखर ए लाड़काने डिवीजन के समूर नंढन वन अदालतन में को भी केस न हलो नंढन वन शहर में वकील जहा मुजाहरा सिंध खिलाफ साजिशू बंद करण जो मुतालबो

0: 7 बजे तक होता आयो तो तमाम अमलो सिवाय डॉक्टर जी बाकी ये हॉस्पिटल पूरी लावारिस हॉस्पिटल लगी पई है।
1: जी बिल्कुल, उन्होंने विजिट किया है। इट्स जस्ट नॉट अ विजिट, ये एक विजिट नहीं था। हमारे हिसाब से तो हमारे पूरे स्टाफ को एक तरीके से बिल्कुल पाबंद कर दिया गया, बांध दिया गया। स्टाफ को बाहर जाने की इजाजत नहीं, नाइट के स्टाफ को अंदर आने की इजाजत नहीं।
0: हॉस्पिटल ते करोड़ रुपयन की बजट आए जेका मेडिसिन के मद में यूटिलाइज करे बजट के खत्म किया वो जी सर्विसिस हॉस्पिटल के जी मांग के मिलन खपन अनफॉर्चुनेटली उसे न पा मिलन।
1: इस अस्पताल में कोई सहूलत नहीं है ना, तो ये चीज़ पूछिए आवाम, वो बेहतर जज होते हैं।
0: हमने 4.5 घंटे इस पर विजिट किया है, देखा है यहाँ की कंडीशन पैथेटिक कंडीशन है।
1: आप यहाँ पर आए, हमारे अगर ऑफिस खुले नहीं है तो ये मतलब नहीं कि आप ताले तोड़वाएं या आप कहेंगे कुछ भी किस तरह करके खोलो ये ताले तोड़ो और इस तरह करके देखो।
2: कल हमें आके बाहर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने आके हमें हरासा किया। कोई भी बाहर का बंदा आकर मैडम को ब्लैकमेल करे या उससे तो हम किसी को भी हम इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करेंगे।
3: हम जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, कोई फोन खाना तो नहीं करते ना, तो ये बाहर के लोग जो आके हमें हरासा करते हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए हम आज अपना रिजाइन जो है तैयार करके आए हैं कि ऐसे माहौल में हम अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते।
4: खंडोला आर जे डी सी ऐं सिहत खाते में तकरार तेज़ थी वियो। एम एस खां पोइ डी एच क्यू जे 37 डॉक्टर समेत स्टाफ जे 98 मुलाज़िमनि खे इस्तीफ़ा ॾेई छॾी। डॉक्टर्स ऐं अमले पारां ओ पी डी जो बाइकाट। डी सी जी गैर ज़रूरी मुदाख़लत बंदि करण जो मुतालबो। डी सी नूर मुस्तफ़ा लखारी चयो आहे त अस्पताल जी जेतिरी बजट आहे उन हिसाब सां कंहिं बि सहूलियतूं न आहिनि। अस्पताल जे करोड़े रुपयनि जी बजट दवाउनि जी मद में ख़तमु कई वञे थी। एम एस डॉक्टर मरियम रुखसाना चयो त अस्पताल में सहूलियतूं आहिनि या न, हुनजो फ़ैसिलो अवाम कंदो। दौरे जो मक़सदु हिरासा करणु हो। राति जे वक़्तु ऑफिसनि जा ताला टोड़णु ऐं स्टाफ खे रोकणु कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। रोड़ी जी मच्छर कॉलोनी में घर जी मरम्मत दौरान छितकिरण सबबु मज़दूर दॿिजी फोत। फोत थियल मज़दूरनि में अजीब ऐं राहिल अबासी शामिल। पुलिस मूजिबि ॿई मज़दूर मच्छर कॉलोनी में अवैध शेख जे घर जी मरम्मत जो कमु करे रहिया हुआ त घर जी छितकिरण सबबु मलबे हेठां दॿिजी फोत थिया। कोठी जी अदालत ॻोठाणे ते तशद्दुद ऐं तस्लील वारे केस में अॻूणे एस एच ओ क़ाबिल पहियो जी ज़मानत रद्द करे छॾी। अदालत मां फरार थियण जी कोशिश दौरान शहर बिरादरी जे माण्हुनि जो क़ाबिल पहियो ते तशद्दुद, संदसि कपिड़ा बि फाटी पिया। पुलिस क़ाबिल पहियो ते तशद्दुद जो केस 51 ॼणनि ख़िलाफ़ दाख़िल करे छॾियो। गंबट में वधंदड़ बदमनी ख़िलाफ़ वापारी बिरादरी ऐं शहरियुनि जो एहतजाज। प्रेस क्लब अॻियां धरणो। अॻवाणनि चयो त गंबट शहर समेत ॿियनि इलाइक़नि में बदमनी वधी वई आहे। खुरूं ऐं चोरियूं मामूल बणिजी वियूं आहिनि। चोरियूं ऐं धाड़नि जा जवाबदार गिरफ़्तार करे शहर में अमन बहाल करायो वञे। फैसगंज भरिसां मुबैना तौर अगवा थियल 15 सालनि जी नीगरी जो केस दाख़िल। वोट मिठू राजपुर वासियुनि 15 सालनि जी नारी कंवल खे अगवा जो केस दाख़िल कयो वियो। नीगरी जे वारिद ग़ुलाम अली राजपुर इल्ज़ाम हयो त न्याणी खे सरफराज़ ऐं अली गुल राजपुर अगवा कयो आहे। पुलिस केस दाख़िल करण बावजूद जवाबदार ख़िलाफ़ कार्रवाई न करे रही आहे।
5: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
6: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
7: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
6: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.8।

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे
3: सिंध जे वसीलन ते कब्ज़ करण जी साज़िश
4: सिंध जो ग्राम ऐं असां जे ना मंजूर आहे
5: हीअ धरतीअ जो इंच इंच जी हिफ़ाज़त कंदासीं ऐं उन जो सबूत आहे जो ख़्वाब ॾिसंदा सिंध खे टुड़ण जा इन जा इहो ख़्वाब असां चकना चूर कंदासीं सिंध जा मज़दूर सिंध जा हारी सिंध जा उस्ताद सिंध जा शाइर अदीब वकील फ्रंट ते हूंदा
6: सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ सिंध जा वकील मैदान ते अची विया सिंध बार काउंसिल जे सॾु ते वकीलनि हिकु आवाज़ थी मुतहिद सिंध जो वाज़े पैगाम ॾेई छॾियो सिंध यूनिटी डे वारे सॾु ते अदालती कार्रवाईनि जो बाइकाट ऐं मुज़ाहिरा कराची खां कश्मोर ऐं कारोंजर खां केटी बंदर ताईं को बि वकील कंहिं बि अदालत में पेश न थियो कराची हैदराबाद मेट्रो ख़ासि शहीद बेनज़ीराबाद सखर ऐं लाड़काणे डिवीज़न जे समूरनि नंढनि वॾनि अदालतनि में को बि केस न हलियो नंढनि वॾनि शहरनि में वकीलनि जा मुज़ाहिरा सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं बंदि करण जो मुतालबो

सिंजा पंज शागिर्द ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में फुल फंडेड स्कॉलरशिप पाण में सुभारा। कामयाब थियलनि में फैज़ा रहमान, अमृता चांडियो, मीर मुसफ़र अली, परजात शाहिद हसन ऐं जुनैद अहमद मेमण शामिल। वॾे वज़ीर बहादुर शाह भुट्टो स्टीम स्कॉलरशिप प्रोग्राम जी तकरीब खे ख़िताब करे चयो त स्कॉलरशिप हासिल कंदड़ शागिर्दनि साबित करे छॾियो आहे त मेरिट कंहिं बि जाग्राफ़ी हद जी पाबंद न आहे। शागिर्दनि जी कामयाबी नई तारीख़ रक़म कई आहे ऐं हुननि सॼे सिंध जो कंध फ़ख्र सां बुलंद कयो आहे।

0: 7:30 बजे तक होता हूँ, तो तमाम हम लोग सिवाय डॉक्टर जी, बाकी ये हॉस्पिटल पूरी लावारिस हॉस्पिटल लगी पड़ी है।
1: जी बिल्कुल, उन्होंने विजिट किया है, इट्स जस्ट नॉट अ विजिट, ये एक विजिट नहीं था। हमारे हिसाब से तो हमारे पूरे स्टाफ को एक तरीके से बिल्कुल पाबंद कर दिया गया, बांध दिया गया। स्टाफ को बाहर जाने की इजाजत नहीं, नाइट के स्टाफ को अंदर आने की इजाजत नहीं।
0: हॉस्पिटल ते करोड़ रुपयन जी बजट आए, जेका मेडिसिन जी मद में यूटिलाइज करे बजट के खत्म किया वेंदो आ। जेके सर्विसेस जेके हॉस्पिटल के जेके ते माण्हू के मिलन खपन, अनफॉर्चुनेटली उहे ते न पिया मिलन।
1: इस अस्पताल में कोई सहूलत नहीं है ना, तो ये चीज पूछे आवाम, वो बेहतर जज होते हैं।
0: हमने 4.5 घंटे इस पे विजिट किया है, देखा है यहाँ की कंडीशन, पैथेटिक कंडीशन है।
1: आप यहाँ पर आए, हमारे अगर ऑफिस खुले नहीं है तो ये मतलब नहीं कि आप ताले तोड़वाएं, या आप कहेंगे कुंडी किस तरह करके खोलो और ये ताले तोड़ो और इस तरह करके देखो।
2: कल हमें आके बाहर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने आके हमें हरासा किया, कोई भी बाहर का बंदा आकर मैडम को ब्लैकमेल करे या उससे, तो हम किसी को भी हम इस चीज में सपोर्ट नहीं करेंगे।
3: हम जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, कोई फोन हम खाना तो नहीं करते ना, तो ये बाहर के लोग जो आके हमें हरासा करते हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए हम आज अपना रिजाइन जो है तैयार करके आए हैं कि ऐसे माहौल में हम अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते।
4: टंडेलयार से DHQ अस्पताल थे DC जे छापे का पोए MS आए 37 डॉक्टर समेत 98 मुलाजमन इस्तीफाओं दे छो, OPDs जो भी बाइकाट। DC नूर मुस्तफ़ा लखारी चाहो तो अस्पताल जे जेतरी बजट आहे उन हिसाब से के भी सहूलतू ना हैं, कुरन जी बजट दवाउन जे मद में खत्म कई वने थी। MS डॉक्टर मरियम नुकसाना चाहो तो अस्पताल में सहूलतू आहन या न, उन जो फैसलो अवाम कंदो। DC जे दौरे जो मकसद हिरासा करण हो, रात जे वक्त ऑफिसन जा ताला टोड़न, स्टाफ के रोकण कें भी सूरत में कबूल ना है। डॉक्टर्स ए पैरामेडिकल स्टाफ समेत 98 मुलाजमन के कम का इनकार कदे इस्तीफाओं सेक्रेटरी सेहत के उमाणे छ। कोटकी की अदालत घोटाने ते तशद्दुद ए तस्दील वारी केस में अगोणे SHO काबिल भाइयों की जमानत रद्द कर छी। अदालत में फरार थियण की कोशिश दौरान शहर बिरादरी के माण्हुनि जो काबिल भाइयों ते तशद्दुद, संदस कपड़ा भी फाड़े फाटी पिया। पुलिस काबिल भाइयों ते तशद्दुद जो केस 51 जणनि खिलाफ़ दाखिल करे छॾियो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: सबूरा आईनी हक का मौजूदा है नरेथा बंदी. वफाकी वजीर चवे तो अड़ा सूबा ठहंदा इन गचाड़ी में चार पंज वफाकी वजीर वेठा.
4: जेके भी इन जा नापाक इरादा आहिन सिंध के तकसीम करण जा उन जे असा बिल्कुल खिलाफ आयो
5: सिंधा मानु समझन ता उन जे वादानत ते वार आए
6: असा सिंध मा मंदो था सिंध सा गद आयो कई भी सपाट सा गद कदी भी न बिना से
7: जो عوام न अगे कदी सिंध के तकसीम करण दनो आ ना
8: कुछ भी सिंधो सिंध वारन डे दींदा से
9: पर सोचूं था सिंध की विरासत न पर असा सिरन की विरासत कंदा से
10: सिर्फ और सिर्फ सिंध के वसीलन ते कब्जे करन की साजिश
11: सिंध जो ग्राम औसा जे ना मंजूर आ
12: की धरती जो इंच इंच की हिफाजत कंदा से उन जो सबूत आ जो ख्वाब दिसंदा सिंध के टुणा जा ने जा यो ख्वाब जा चकना चुर कंदा से सिंध जा मजदूर सिंध जा हारी सिंध जा उस्ताद सिंध जा शायर अदीब वकील पहुंचे हुंदा

چنچے بعد میں خاص شہید کا نظر آباد चक्कर ऐं लाड़काणे डिवीजन जे समूरनि नंढियुनि वॾियुनि अदालतनि में को बि केस न हलियो. नंढनि वॾनि शहरनि में वकीलनि जा मुज़ाहिरा सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं बंदि करण जो मुतालबो.

0: अजी सिंध असांजी मर्ज़ी खां सवाइ तब्दील न थींदो। कच्छ जी ज़मीन कंहिं बि सरदार या वॾेरे खे न ॾिनी वेंदी। सिंध जे घरू वज़ीर सियारत अंजार जी सिंध असेंबली जे घरू मामलनि बारे स्टैंडिंग कमेटी जे इजलास खां पोइ ॻाल्हि ॿोल। जालंजार चयो त कराची में गुज़िरियल कुझु ॾींहनि दौरान स्ट्रीट क्राइम जा वाकिया वधिया आहिनि। कच्छ वारे इलाइक़े में अमन अमान जी सूरतहाल बहितर आहे। कराची यूनिवर्सिटी जे प्रोफेसर ते तशद्दुद मुलविस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वेंदो। मनशियात शहरनि, स्कूलनि, कॉलेजेस ऐं यूनिवर्सिटीज़ ताईं पखिड़जी रही आहे। कराची में 81% क़तल जा केस ट्रेस करे वरिता आहिनि। ॿियनि केसनि में 87% ट्रेस थियण जी शरह साम्हूं आई। छा अदलिया एतिरी कमज़ोर आहे जो तव्हां हुन खे मज़बूत करणु चाहियो था? अदलिया एतिरी कमज़ोर नाहे जो हुन खे कंहिं सियासी जमायत जी हिमायत जी ज़रूरत हुजे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस सरफराज प्रभास शहीद में नज़रबाद सखर ऐं हिमायत जी ज़रूरत हुजे। ॿुधणी सुभाणे ताईं मुलतवी। चइनी सूबनि जे चीफ सेक्रेटरियुनि आई जी समेत समूरनि लाॻापियल अमलदारनि खे ॿीहर ज़ाती हैसियत में पेश थियण जो हुकुम। पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब जो दिफ़ाई सहकार जारी आहे। दिफ़ाई माहिदे ते अमल दरामद लाइ वक़्तु घुरबल आहे। परॾेही तर्जुमान सजाद हैदर ख़ान चयो आहे त पाकिस्तान सऊदी अरब जी ख़ुदमुख़्तारी ऐं सलामती लाइ हिमायत जारी रखंदो। पाक फोर्स सऊदी अरब में तरबियत लाइ लॉजिस्टिक सहूलियत लाइ मौजूदु आहे। पाकिस्तान सऊदी ते हूसी हमलनि जी मज़म्मत करे चुको आहे। शागिर्दनि ते बि पाबंदी वारियूं ख़बरूं दुरुस्त न आहिनि। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो तुर्किया जे परॾेही वज़ीर हकान फिदान सां राब्तो। वितरफ़नि लाॻापनि समेत ख़िते जी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल। परॾेही खाते मूजिबि इसहाक़ डार ऐं हकान फिदान में विचोभर जी तब्दील थींदड़ सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। सूरतहाल ते सिफ़ारतकारी वारो सिलसिलो जारी रखण ते इतफ़ाक़। उर्दन में अमरीकी अॾे ते ईरानी हमलनि जे नतीजे में अमरीका जे केतिरनि ई फ़ौजी जहाज़नि खे नुक़सान पहुतो आहे। अमरीकी मीडिया तस्दीक करे छॾी। CBC न्यूज़ पंहिंजी रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त ईरानी मिज़ाइल हमलनि में अमरीका जा F-15 जहाज़ A-10 थंडर बोल्ट मुतासिर थिया आहिनि, जॾहिं त कंहिं बि अमरीकी फ़ौजी खे नुक़सान नाहे पहुतो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ आटो पॉलिसी 2026 जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। ऐलान IMF जी मंज़ूरी बाद कयो वेंदो। आटो पार्ट्स जी बरामदात वधाइण लाइ आलमी वैल्यू चेन सां गठण ऐं 5 वॾा एंकर मैन्युफैक्चरिंग इदारा ठाहिण जी तजवीज़। बरामदी आटो पार्ट्स ते दरामदी ड्यूटी ख़तम करण जी बि सिफ़ारिश थियल। सिंध जो घरू वज़ीर सियाल अंजार तलबी ते मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन आॾो पेश। सियाल अंजार एडवोकेट जनरल जे रवैये ते गैर मशहूर माफ़ी वठी छॾी। जस्टिस उमर सियाल चयो त अवां खे घुराइण जो मक़सदु वारिसनि ऐं अवाम जो एतमाद बहाल करणु आहे। एडवोकेट जनरल जो रवैयो गैर ज़िमेवारनो ऐं तस्दीक आमेज़ हो। घरू वज़ीर सियाल अंजार चयो त सिंध हुकूमत केस जी शिफ़ाफ़ जांच चाहे थी। कमीशन जो नतीजनि ताईं पहुचणु ज़रूरी आहे। ज़िमेवारनि खे मंतकी अंजाम ते पहुचायो वेंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो GAFM 90.8।

लहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: तू ना मेरा हीटर, तू तो मेरा फैन।
1: White H Beauty Cream 5-day beauty plan के साथ एलोवेरा, vitamins और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके minerals स्किन में fully absorb हो जाए, स्किन को fair और fresh बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White H Beauty Cream, glowing skin का राज, a product of Biocon International Pakistan।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

रही हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: It's 8 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: वफाकी हुकूमत जो नवन सूबन वारे मामले ते कौमी असेंबली ऐं सेनेट में बहस करण जो ऐलान पार्लियामानी मामलनि वारे वफाकी वज़ीर तारिक फज़ल चौधरी चयो आहे त सूबन वारे मामले ते बहस जो असल हंध पार्लियामेंट आहे. अक्टूबर में कौमी असेंबली ऐं सेनेट जे इजलासनि दौरान नवन सूबन वारे मामले ते बहस करायो वेंदो. इस्लामाबाद खे धार सूबो ठाहिण ते का ॻाल्हि ॿोल नाहे थी. राजधानी वारे शहर खे सूबो ठाहिण बदिरां हुते हिकु नओं गवर्नेंस मॉडल ठाहिण जूं तयारियूं हली रहियूं आहिनि.

जिन जे सियासतदान कानूनदान अदीबन ऐं साफ़ियन नवनि सूबनि जे गालियुनि खे गैर ज़रूरी करार ॾेई रद्द करे छॾियो। वैद त सिंध कराची यूथ डायलॉग में सिंध जे इम्कानी विरागे ख़िलाफ़ ठहराउ मंज़ूर। मरसूं सिंध ॾिसूं जा नारा। पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसारे मतकोड़े चयो आहे त सिंध असेंबली 6 भेरा ठहराउ मंज़ूर कया त कराची खे सिंध खां धार नथो करे सघिजे। सिंध जा माण्हू जानियूं क़ुर्बान करे सघनि था पर धरती माउ जो विरागो बर्दाश्त न कंदा। सूबाई वज़ीर सईद ख़ानी जो चवणु आहे त खेसि हालतूं ख़राब थींदे नज़र अची रहियूं आहिनि। सिंध जे विरागे में सभ खां वॾी रुकावट पीपल्स पार्टी न पर सिंध जो अवाम आहे। पीटीआई वारा तकरीरूं त कनि था पर हुननि सूबनि जे विरागे ख़िलाफ़ वोट न ॾिनो। जमात इस्लामी जो हिकु मेंबर आयो, उहो बि वोट ॾियण बदिरां भॼी वियो। सीनियर वकील शाह सरकी, आसमा शिराजी ऐं प्रोफेसर डॉक्टर सईद जाफ़र चयो त मुल्क पहिरियां ई घणो विरायल आहे, वधीक तक़सीम जूं ॻाल्हियूं मुनासिब न आहिनि। सभु तजुर्बात थी चुका आहिनि, मुल्क वधीक कंहिं तजुर्बे जी सथ नथो सही सघे।

0: जेके भी हिननि जा नापाक इरादा आहिनि सिंध खे तक़सीम करण जा, उन जे असां बिल्कुलु ख़िलाफ़ आहियूं।
1: सिंध जा माण्हू सम्झनि था हुन जे वातानियत ते वार आहे।
2: असां सिंधी माण्हू ईंदो असां सिंध सां गॾु आहियूं, कंहिं बि समाज सां गॾु कॾहिं बि न बीहंदासीं।
3: सिंध जो अवाम न अॻे कॾहिं सिंध खे तक़सीम थियणु ॾिनो आहे, न हाणे ॾींदासीं।
4: मजदूर हारी उस्ताद शायर अदीब वकील
5: सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ सिंध जा वकील मैदान ते अची विया। सिंध बार काउंसिल जे सॾु ते वकीलनि हिकु आवाज़ थी मुतहिद सिंध जो वाज़े पैगाम ॾेई छॾियो। सिंध यूनिटी डे वारे सॾु ते अदालती कार्रवाईनि जो बाइकाट ऐं मुज़ाहिरा। कराची खां कश्मोर ऐं करंजर खां केटी वंदड़ ताईं को बि वकील कंहिं बि अदालत में पेश न थियो। कराची, हैदराबाद, मीरपुखा, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं लाड़काणे डिवीजन जे समूरनि नंढियुनि वॾियुनि अदालतनि में को बि केस न हलियो। नंढनि वॾनि शहरनि में वकीलनि जा मुज़ाहिरा सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं बंद करण जो मुतालबो।
6: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
7: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
8: GAFM 88
7: नेटवर्क,
9: सिंध की आवाज़।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: वफाकी हुकूमत जो नवन सूबन वारे मामले ते कौमी असेंबली सेनेट में बहस करण जो ऐलान पार्लियामानी मामले वारे वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी चयो है सूबन वारे मामले ते बहस जो असल हंध पार्लियामेंट है अक्टूबर में कौमी असेंबली सेनेट के इजलास दौरान नवन सूबन वारे मामले ते बहस कराई वो इस्लामाबाद के थार सूबो ठहण से का गाल बोल नए थी राजधानी वारे शहर के सूबो ठहण बदरा उत एक नव गवर्नेंस मॉडल ठहण जो तैयारियों हली रही है।

0: जेतिरो बि हिननि जा नापाक इरादा आहिनि सिंध खे तक़सीम करण जा, हुन जे असां बिल्कुलु ख़िलाफ़ आहियूं।
1: सिंध जा माण्हू सम्झनि था हुन जे वादानत ते वार आहे।
2: सिंधी माण्हू ईंदो असां सिंध सां गॾु आहियूं, कंहिं बि समाज सां गॾु कॾहिं बि न बीहंदासीं।
3: सिंध जो अवाम न अॻे कॾहिं सिंध खे तक़सीम थियणु ॾिनो आहे, न हाणे ॾींदासीं।
4: सिंध वारा न ॾींदासीं,
5: पर सोचूं था त सिंध जी विरासत न पर असां सिरनि जी विरासत कंदासीं।
6: सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ सिंध जे वसीलनि ते कब्ज़ करण जी साज़िश
7: आहे। ग्राम असांजे नामंज़ूर आहे,
8: धरती जो इंच इंच जी हिफ़ाज़त कंदासीं ऐं उन जो सबूत आहे। हाज़ ॾिसंदा सिंध जो पिण जा हिन जा इहो हाज़ जा चटा चुकंदासीं। सिंध जा मज़दूर, सिंध जा हारी, सिंध जा उस्ताद, सिंध जा शाइर, अदीब, वकील कोन चवंदा।

सिंध जे इम्कानी विरह के खिलाफ सिंध जा वकील मैदान से अची व्या। सिंध बार काउंसिल के सटते वकील ने एक आवाज थी मुतहद सिंध जो वाजह पैगाम दई छो। सिंध यूनिटी डे वाले सटते अदालती कार्रवाई जो बाइकाट मुजाहरा कराची का कश्मोर कारुंजर का केटी बंदर तई को भी वकील कें भी अदालत में पेश न थो। कराची हैदराबाद मीरपुरफास शहीद बे नजीराबाद सखर ए लाड़काने डिवीजन के समूर नंडियन वडियन अदालत में को भी केस न हलो। एहतजाजी मुजाहरा धरना सिंध के सियासतदान कानूनदान अदीबन ए सहाफियन सिंध के इम्कानी विरागे के रद्द कर छो। वहदत सिंध कराची यूथ डायलॉग में सिंध के इम्कानी विरागे खिलाफ ठहराव मंजूर। मरसू मरसू सिंध नेसू जा नारा। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद कोड़े चयो आहे त सिंध असेंबली छह भेरा ठहराव मंजूर कया त कराची के सिंध का धार नथो करे सघजे। सिंध जा माण्हू जानू कुर्बान करे सघनि था पर धरती माउ जो विरागो बर्दाश्त न कंदा। सूबाई वज़ीर सईद ग़नी जो चवण आहे त खेस हालतूं ख़राब थींदे नज़र अची रहियूं आहिनि। सिंध के विरागे में सब का वही रुकावट पीपल्स पार्टी न पर सिंध जो अवाम है। पीटीआई वा तकरीरू तो कन था पर उन्होंने सूबन के विरागे खिलाफ वोट न दिनों। जमायत इस्लामी जो एक मेंबर है यो भी वोट दियण बदरा भजी वो। सीनियर वकील शहाब सिल्की आसमा शिराजी ए प्रोफेसर डॉक्टर सईद जाफर चयो तो मुल्क पहरिया ही घणो विरायल है वधिक तकसीम जो गाल मुनासिब ना सब तजुर्बा थी चुका मुल्क वधिक कें तजुर्बे की सट न तो सही सके।

पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब जो दिफ़ाई सहकार जारी आहे। दिफ़ाई मुआहिदे ते अमल दरामद लाइ वक़्तु घुरबल आहे। परॾेही तर्जुमान सजाद हैदर ख़ान चयो आहे त पाकिस्तान सऊदी अरब जी ख़ुदमुख़्तारी ऐं सलामती लाइ हिमायत जारी रखंदो। पाक फोर्स सऊदी अरब में तरबियत ऐं लॉजिस्टिक सहूलत लाइ मौजूदु आहे। पाकिस्तान सऊदी ते हौसी हमलनि जी मज़म्मत करे चुको आहे। अफ़गान शागिर्दनि ते बि पाबंदी वारियूं ख़बरूं दुरुस्त न आहिनि।

सिंध में मनशियात खिलाफ़ कार्रवाई वधीक सलाहियतूं ऐं नतीजो ॾींदड़ बणाइण लाइ मज़बूत हिकमत अमली जोड़ण जी हिदायत। चेयरपर्सन फलियार टारकोट जी सदारत हेठि सिंध असेंबली जे घरू मामलनि वारी स्टैंडिंग कमेटी जे इजलास में लाॻापियल अमलदारनि जी तफ़सीली ब्रीफिंग। फरियाल टारकोट चयो आहे त सरहदी इलाइक़नि ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि ते चेकिंग वधीक सख़्त कई वञे। तालीमी इदारनि जे भर पासे में मनशियात जो विकिरो ऐं इस्तेमाल कंहिं बि सूरत में बर्दाश्त न कयो वेंदो। आईजी सिंध असांजी इजाज़त खां सवाइ तब्दील न थींदो। कचे जूं ज़मीनूं कंहिं वॾेरे या कंहिं ख़ासि माण्हूअ खे न ॾींदासीं। सूबाई घरू वज़ीर ज़ियाल हसन लंजार जे घरू मामलनि बाबति सिंध असेंबली जी स्टैंडिंग कमेटी जे इजलास खां पोइ ॻाल्हि ॿोल। ज़ियाल लंजार चयो त कराची में स्ट्रीट क्राइम वधी वियो आहे ऐं पाण बि पेट्रोलिंग कंदुसि। कचे में अमान सूरताल बहितर थी वई आहे। मुकमल अमन दुनिया में किथे बि न आहे। मुल्क में पिंकी खां बि वॾा मनशियात फरोश मौजूदु आहिनि। इन्हनि जा नाला हींअर यादि न आहिनि। एस एस पी फिदा जामरी तशदुद केस में मुलविस हूंदो त कार्रवाई कंदासीं। कराची यूनिवर्सिटी जे प्रोफेसर ते तशदुद में मुलविस जवाबदारनि खे बि गिरफ़्तार कयो।

छा अदलिया एतिरी कमज़ोर आहे जो तव्हां हुनखे मज़बूत करणु चाहियो था? अदलिया एतिरी कमज़ोर नाहे जो हुनखे कंहिं सियासी जमायत जी हिमायत जी ज़रूरत हुजे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस सरफराज तोगरदार रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ़ जे 27 सितंबर ते एलानियल एहतजाज ऐं लॉन्ग मार्च ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ॿुधणी। लार्जर बेंच ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे एडवोकेट जनरल खे रोस्टम ते तलब करे अहम सवालनि जा जवाब घुरिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर रिमार्क्स ॾींदे चयो त गुज़िरियल चइनि सालनि खां अदालती फ़ैसलनि जी भजकड़ी थी रही आहे। असीं रुगो मौजूदा सूरतहाल जी न गुज़िरियल टिनि सालनि जे वाक्यनि जी ॻाल्हि करे रहिया आहियूं। फ़ैसलनि जी भजकड़ी क़बूल नाहे। पीटीआई जे लॉन्ग मार्च खे हमिलो करार ॾियण बाबति बि सवाल उथारियो वियो। केपी जे एडवोकेट जनरल चयो त उहो लॉन्ग मार्च अदलिया जे हक़ में आहे। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर चयो त तव्हांजी वॾी महिरबानी, छा अदलिया एतिरी कमज़ोर आहे जो तव्हां हुनखे मज़बूत करणु चाहियो था? अदलिया खे कंहिं सियासी जमायत जी हिमायत जी ज़रूरत नाहे। ॿुधणी सुभाणे ताईं मुलतवी। चइनि सूबनि जे चीफ सेक्रेटरियुनि आई जी समेत समूरनि लाॻापियल अमलदारनि खे ॿीहर ज़ाती हैसियत में पेश थियण जो हुकुम। मीरज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन पारां डॉक्टर सामा जे जवाब ते बेतवादी ज़ाहिर। 15 सितंबर ते ज़ाती हैसियत में तलब कमीशन एसएचओ अदील अफ़ज़ाल, हेड मुहरर ज़ीशान, डॉक्टर समिया ऐं प्रोफेसर नसीम खे 14 सितंबर ते तलब करे वरितो। कमीशन जे रजिस्ट्रार चयो आहे त शहरियुनि बि केस बाबति ॼाण ॾियणु शुरू करे छॾी आहे। हिकु शहरी पारां फाइनांस अकाउंट बि ॼाण फ्राहम करण ते रास्तो ज़ाहिर कयो। ॿिए शहरी डिजिटल फुटप्रिंट्स बाबति ॼाण ॾिनी। हिकु शहरी केस में मशकूक शख़्स जी बि निशानदेही कई। कमीशन ॼाण ॾींदड़ शहरियुनि जी सुञाणप ॻुझी रखण जो फ़ैसिलो कयो आहे।

सिंध जा पंज शागिर्द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फुल फंडेड स्कॉलरशिप माण में सोभारा कामयाब थियनि में फैज़ा रहमान अमरता चांडो मीर मुसविर अली फरजाद शाहिद हसन ऐं जुनैद अहमद मेमण शामिल वॾे वज़ीर मुराद अली शाह भुट्टो स्टीम स्कॉलरशिप प्रोग्राम जी तकरीब खे ख़िताब कंदे चयो त स्कॉलरशिप हासिल कंदड़ शागिर्दनि साबित करे छॾियो आहे त मेरिट कंहिं बि जाग्राफ़ियाई हद जी पाबंद न आहे शागिर्दनि जी कामयाबी नई तारीख़ रक़म कई आहे ऐं हुननि सॼे सिंध जो कंध फ़ख्र सां बुलंद कयो आहे।

0: साढ़े छः सत बजे तक होता है तो तमाम हम लोग सिवाय एक डॉक्टर जी बाकी ये हॉस्पिटल पूरी लावारिस हॉस्पिटल लगी पड़ी है।
1: जी बिल्कुल, उन्होंने विजिट किया है, इट्स जस्ट नॉट अ विजिट, ये एक विजिट नहीं था। हमारे हिसाब से तो हमारे पूरे स्टाफ को एक तरीके से बिल्कुल पाबंद कर दिया गया, बांध दिया गया। स्टाफ को बाहर जाने की इजाजत नहीं, नाइट के स्टाफ को अंदर आने की इजाजत नहीं।
0: टे करोड़ रुपये की बजट आए जेका मेडिसिन के मद में यूटिलाइज करें बजट के खत्म किया वो जी सर्विसिस हॉस्पिटल के जी इत मूँ के मिलन खत्म अनफॉर्चुनेटली ना मिलन।
1: इस अस्पताल में कोई सहूलत नहीं है ना, तो ये चीज पूछे आवाम वो बेहतर जज होते हैं।
0: हमने साढ़े चार घंटे इस पर विजिट किया है, देखा है यहाँ की कंडीशन अच्छी कंडीशन है।
1: आप यहाँ पर आए, हमारे अगर ऑफिस खुले नहीं है तो ये मतलब नहीं।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है, GAFM 88 नेटवर्क। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: थोड़े जिन असेंबली छह भेरा ठहराव मंजूर कराया तो कराची के क्षेत्र का धार न तो कर सकते सिंध जहा मू जान कुर्बान कर सकता पर धरती माओ जो विरागो बर्दाश्त न कंदा। सूबाई वजीर सईद गनी जो चवण है तो कई साल तू खराब थन्दे नजर अची रही है। सिंध के विरागे में सब का वही रुकावट पीपल्स पार्टी नंबर सिंध जो अवाम है। पीटीआई वाला तकरीरू तो कन था पर उन्हें सूबन के विरागे खिलाफ वोट न दिनों। जमात इस्लामी जो एक मेंबर है वो भी वोट दियण बदरा फजी वो। सीनियर वकील शहाब सरकी असमा शिराजी ए प्रोफेसर डॉक्टर सईद जाफर चाहिए मुल्क पे ही घड़ो विरायल है तकसीम जो गाल मुनासिब ना सब तजुर्बा चुका मुल्क कें तजुर्बे की सट नही सही सके।

0: हुनजो वादानियत ते वार आहे
1: त सिंधी मां मिलंदो असां सिंध सां गॾु आहियूं कंहिं बि सां पाठ सां कॾहिं बि न बीहंदासीं
2: सिंध जो अवाम न अॻे कॾहिं सिंध खे तक़सीम थियणु ॾिनो आहे न हाणे ॾींदासीं
3: सिंध वारनि खे ॾींदासीं
4: पर सोचूं था त सिंध जी विरासत न पर असां सिरनि जी विरासत कंदासीं
5: सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ सिंध जे वसीलनि ते कब्ज़ो करण जी साज़िश
6: आहे ग्राम असांजे नामंज़ूर आहे धरतीअ जो इंच इंच जी हिफ़ाज़त कंदासीं ऐं उन जो सबूत आहे जो हाल ॾिसंदा सिंध जो टुणवंजाह इन जा इहो फाज़ जा चटा चूर कंदासीं सिंध जा मज़दूर सिंध जा हारी सिंध जा उस्ताद सिंध जा शाइर अदीब वकील कोन चवंदा